रुक, चलते चलते पीछे मुड़ के देख जरा, तेरे रास्ते में है तेरा यार खड़ा।

0: कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं, आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं, आई लव यू।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए सुनते हैं पहला फ्लैश न्यूज आपसे याचना। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए अपनी जगह बना गया। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 अर्जेंटीना 2। अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी। फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। लायनल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा। पहला खिलाड़ी है कफू जो ब्राजील के साथ खेला था। और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार 11 बजे आप देख पाएंगे। मॉरिशस टेलीकॉम देश के तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में है। देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाई के स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित अपने प्रमुख प्रौद्योगिकी सम्मेलन ऑल माइटी समिट 2026 के लिए डिजिटल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एक मंच पर ला रही है। राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में नहीं बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वित्तीय अपराधों की रोकथाम संबंधी अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गंभीर खामियों और कमजोरियों का खुलासा किया है। विदेश की खबरों में जो आज सुर्खियों में है, उनमें ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान अमेरिकी बलों ने होर्मुज जलमार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान को बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।

0: का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवाओं का असर है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह सेंट्रल प्लाटो पर कुछ बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। दोपहर बाद भी बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। रात को आसमान साफ रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 7:45, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: चलिए श्रोताओं, 6:05 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि अब जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं आप एकदम स्वस्थ हैं और कुशल मंगल से हैं। तो चलिए, आज है गुरुवार 16 जुलाई 2024। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। वैसे एक बहुत ही प्यारा सा सफ़र है, इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ निभाने वाली है। कहते हैं हर एक नए सुबह हमारे लिए एक सुंदर उपहार है। तो चलिए, आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ और मंगलमय हो। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिव्य दृष्टि के साथ। ये कार्यक्रम जो है मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से प्रसारित है और इस कार्यक्रम को प्रसारित करने वाले हैं आचार्य सकलानी जी।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
2: ओम योन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले प्रसंगों से हम सत्संग और कुसंग पर चर्चा कर रहे हैं। सत्संग, जिस संग से स्वयं भगवान बस में हो जाते हैं, उससे बढ़कर के और कौन सी वस्तु या साधन हो सकता है? श्रोताओं, यह सत्संग जिन जिन महात्मा सत्पुरुषों से प्राप्त होता है, उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा मनुष्य को अपने जीवन की बाजी लगाकर कर देना चाहिए। यह चेष्टा ही साधना है। श्रोताओं, वास्तविक संत या महात्मा पुरुष मिल जाएं और उन्हें हम पहचान लें, फिर तो मानव जीवन की सर्वोपरि सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाता है। परंतु श्रोताओं, जब तक वैसे पुरुष न मिलें, तब तक श्रद्धापूर्वक अन्यान्य सद्वस्तुओं का, सतशास्त्रों का और सात्विक वृत्ति वाले श्रेयस्कर साधकों का संग करते रहना चाहिए। ऐसे साधकों का अथवा यदि भगवत कृपा से प्राप्त अगर हो भी जाए तो

होता, सिद्ध महात्माओं का श्रद्धापूर्वक संग करना और उनके परमार्थ पूर्ण वचनों को प्रेम एवं सदाचार और बड़े आदर के साथ सुनना, फिर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने की चेष्टा करना सत्संग का एक श्रेष्ठ रूप माना गया है। सच्चे सत्पुरुषों और महात्माओं की पहचान होना श्रोताओं बड़ा कठिन है, क्योंकि हम अपनी जिस विषयाशक्त कामनाग्रस्त अज्ञान विमोहित और अनिश्चयात्मक बुद्धि की कसौटी पर कस करके सत्पुरुष को या महात्माओं को पहचानना चाहते हैं, उस कसौटी पर कसी जाने वाली वस्तु उन महापुरुषों में रहती ही नहीं श्रोताओ। उन महात्मा पुरुषों में कोई दोष नहीं रहने पर भी हम अपनी अश्रद्धा या तमसा वृत्ति बुद्धि से उनकी चेष्टा के रहस्य को न समझ करके उनमें दोषारोपण कर सकते हैं। परंतु श्रोताओ, बाहरी चिन्ह से महात्मा पहचाने नहीं जा सकते, क्योंकि एक ढोंगी आदमी भी तो जीवन भर महात्मा सब बना रहता है, और यथार्थ महात्मा पुरुष भी अपनी बाहरी क्रियाओं से साधारण स्थिति के मनुष्य समझे जाकर के जीवन भर छिपे रह सकते हैं। वास्तव में महात्माओं की पहचान तभी हो सकती है जब वे अपनी कृपा करके अपनी पहचान करा देते हैं, परंतु हमारी अश्रद्धा इनमें प्रधान बाधक होती है। हम महात्माओं की कृपा प्राप्त करने का मन नहीं रखते हैं, हम तो अश्रद्धा को साथ लिए उन्हें अपनी तुच्छ कसौटी पर कसते फिरते हैं, और जहाँ कहीं अपनी कसौटी से उनमें जरा भी कसर मालूम पड़ी है और पड़ती है, उनके महात्मा न होने का बिल्कुल हम एकदम और घोषणा कर बैठते हैं। परंतु बहुत से महात्मा तो ऐसे छिपे रहते हैं कि उनका महात्मापन किसी पर विदित ही नहीं होता। ऐसे लोगों के पास तो प्रायः कोई जाता ही नहीं, परंतु इतना होने पर भी ये तो कहना ही पड़ता है कि आजकल के दंभपूर्ण जगत में बहुत सोच समझ करके ही किसी को संत महात्मा या महापुरुष मान करके आत्मसमर्पण करना चाहिए। जिनके मन वचन और तन में सात्विकता का बोध हो और जिनके संग से दैवी संपदा और भगवत परायणता की वृद्धि हो, उनका संग करना उत्तम है श्रोताओ। परंतु ऊपर से उत्तम दिखने पर भी जिनके और संग से आसुरी संपदा और भगवत विमुखता की वृद्धि होती है श्रोताओ, तो ऐसे लोगों के संग से बचना चाहिए। शास्त्रों में अनेक जगहों पर सत्पुरुषों के और महात्माओं के लक्षण बतलाए गए हैं। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अज्ञ अजात सत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा मयन्यन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्मणस्त्यक्ताक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नेतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्य स्वतः ते प्रार्थ्य संगदोषहराहिते। कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है कि भगवान कपिल कह रहे हैं माँ देवहूति से कि हे माँ, जो किसी भी प्रतिकूलता और अनुकूलता में विषाद और हर्ष को प्राप्त नहीं हो करके स्वाभाविक ही सहनशील और दयालु है, प्राणी मात्र के प्रति अकारण ही प्रेम रखने वाला सुहृद है, जिनके मन कोई शत्रुता जिसके मन में कभी होती ही नहीं, जो शांतचित हैं, साधु चरित हैं, साधुता ही जिनका भूषण है, जो भगवान को तत्व से जान करके अनन्य भाव से और दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए जो समस्त कर्मों का, भगवान कपिल कह रहे हैं कि हे माँ, मेरे लिए जो समस्त

समस्त कर्मों का एवं स्वजन बांधवों का त्याग कर चुका है, जो मुझ पर निर्भर है, मेरी ही पवित्र तथा मधुर कथा को कहते सुनते हैं, ऐसे मदगत चित्त साधुओं को संसार के विविध ताप नहीं तपा सकते। हे मां, सब संगों से रहित ऐसे सत्पुरुष ही विषयासक्ति से उत्पन्न हुए दोषों का नाश करते हैं, इसलिए ऐसे ही पुरुषों का निरंतर संग करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान स्वयं भक्तवर उद्धव से कह रहे हैं कि कृपालु रत कृतद्रोह स्थितिक्षुः सर्वदेहिनां सत सत्यसारोऽन्यवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। जो समस्त प्राणियों के प्रति कृपालु है, किसी के साथ भी द्रोह नहीं करता, तितिक्षावान सत्यशील पवित्र अंतःकरण समदर्शी और सबका उपकार करने वाला है। कामैरहतै दीर्दन्तौ मृदुः शुचिर किञ्चनः अनीहो मितभुक्षान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः। जिनकी बुद्धि कामना से रहित है, इंद्रियां जिनके वश में हैं, जो मृदु स्वभाव सदाचारी अकिंचन निष्प्रिय मिताहारी शांतचित स्थिरमति और मेरे शरण में हैं, अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांजित षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः। और मेरे स्वरूप गुणों का ही चिंतन करता हो, जो प्रमाद रहित गंभीर अंतःकरण वाला धैर्यवान और भूख प्यास शोक मोह तथा जन्म मृत्यु इन छह प्राण मन और शरीर के गुणों को जीत चुका है, अर्थात इनसे जो मोहित नहीं है, जो स्वयं मान का त्यागी होकर के दूसरों को मान देता है, समर्थ है, सबका मित्र है, दयालु है और तत्व का ज्ञाता है, वो साधु है। श्रोताओ, महाभारत में शांति पर्व में भीष्म पितामह ने सत पुरुषों का लक्षण बताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर, अब मैं उन महापुरुषों का लक्षण बताता हूँ जिनका संग करने से पुनर्जन्म का भय नहीं रहता है, अर्थात जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वे पुरुष मांसाहार नहीं करते, प्रिय अप्रिय को समान मानते हैं, शिष्ट पुरुषों का आचार उन्हें बहुत प्रिय है, इंद्रियां सदा के लिए उनके वश में हैं, सुख दुख में वे समबुद्धि हैं, सत परायण दानशील किसी का परिग्रह न लेने वाले और दयालु हैं। वे पितर देवता तथा अतिथियों का सत्कार करते हैं, सबका मंगल करने की चेष्टा करते हैं, परोपकारी वीर और धर्म का पालन करने वाले हैं, प्राणी मात्र का हित करने वाले, अवसर आने पर सर्वस्व दे डालने वाले और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने वाले हैं। उनका व्यवहार धर्ममय होता है, वे प्राचीन सत्पुरुषों के किए हुए आचरण का खंडन नहीं करते हैं, किसी को त्रास नहीं देते हैं, चंचल बुद्धि नहीं होते हैं, भयानक नहीं होते हैं और सदा सन्मार्ग पर स्थित रहते हैं। उनमें अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, वे काम क्रोध ममता और अहंकार से रहित होते हैं, मर्यादा में हमेशा स्थित रहते हैं, धन या कीर्ति के लिए धर्म का पालन और नहीं करते हैं, बल्कि स्नान भोजन आदि शारीरिक क्रियाओं के समान धर्म पालन उनका स्वाभाविक कार्य होता है। उनमें भय क्रोध चपलता और शोक नहीं होता, वे धर्म पालन का ढोंग नहीं करते हैं, वे सत्यवादी और सरल होते हैं, लाभ में उन्हें हर्ष नहीं होता और हानि में उनको व्यथा नहीं होती है, वे सदा सत्व में स्थित समदर्शी और लाभ हानि सुख दुख प्रिय अप्रिय तथा जीवन मृत्यु में समान रहते हैं, वे दृढ़ पराक्रमी परम श्रेय को प्राप्त और सत्य मार्ग पर स्थित रहते हैं। श्रोताओं, शास्त्रों में

0: इन्हीं महापुरुषों का बहुत वर्णन किया गया है। कहाँ तक कहा जाए श्रोताओं, महापुरुषों के लक्षणों और महिमा से हमारे शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। इसलिए महापुरुषों का संग कीजिए, सत्संग कीजिए, आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। श्रोताओं, यहीं पर आज समय समाप्त हुआ चला जा रहा है। इस प्रसंग को लेके पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

श्रोताओं, 6:19 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस समय से लेकर 6:30 तक चंद भाव गीत आपकी सेवा में। वैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वही है श्रोताओं, जिसे हम पूरे दिल से जी लें, क्योंकि कौन जाने कल हो न हो।

चलिए यीशु त्याओ चंद भाव गीत आपकी सेवा में। वैसे आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है ये अगला गीत। इंसान इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आता है और अपनी यादों, अपने कर्मों और अपने प्रेम की छाप छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो चलिए श्रोताओ, कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं और आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन सकेंगे। 7 बजे मिलेंगे सुबह का नज़ाना कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के 6:30 बजे हैं। सभी को नमस्कार और आदाब। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 अर्जेंटीना 2। अब फाइनल मैच खेला जाएगा रविवार रात 11 बजे। मॉरिशस टेलीकॉम देश के तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में। देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाई के SVICC केंद्र में आयोजित अपने प्रमुख समिट ऑल माइटी समिट 2026 के लिए डिजिटल और रणनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एकत्र कर रहा है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उसकी रिपोर्ट आम हुई है। विदेश की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के 5वें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। समाचार विस्तार से। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए अपनी जगह बना गया। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 अर्जेंटीना 2। अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी। फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। आपको बता दें, लायोनेल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया है जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा। पहला खिलाड़ी है काफू, जो ब्राज़ील के साथ खेला था। और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल MBC स्पोर्ट्स 11 और MBC प्ले पर रविवार रात 11 बजे आप देख पाएंगे। मॉरिशस टेलीकॉम देश के तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में है। देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाई के SVICC में आयोजित अपने प्रमुख प्रौद्योगिकी सम्मेलन ऑल माइटी समिट 2026 के लिए डिजिटल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एक ही मंच पर ला रही है। राष्ट्र स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में सामने आ रही है। जॉन फ्रांसवा लेकिन की रिपोर्ट है और विवरण विधिमा सिबुरन का है।
2: मॉरिशस

0: टेलीकॉम के लिए ये ऑल माइटी समिट 2026 उनका प्रमुख तकनीकी शिखर सम्मेलन केवल एक संचार कार्यक्रम से कहीं बढ़कर है। ये एक रणनीतिक शक्ति का प्रदर्शन है। सरकार, वित्तीय संस्थानों और वैश्विक दिग्गजों को एक मंच पर लाकर ये टेलीकॉम ऑपरेटर ये साबित करना चाहता है कि वो मॉरिशस में डिजिटल बदलाव की रीढ़ है। इस नए आयाम का पहला प्रतीक मॉरिशस सरकार और अमरीकी दिग्गज कंपनी अमेज़न वेब सर्विसेज के बीच हस्ताक्षरित ऐतिहासिक साझेदारी समझौता है, जिसे मॉरिशस टेलीकॉम ने सुगम बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी बजट की घोषणा को ऐतिहासिक गति देना, जिसके तहत 50,000 मॉरिशस वासियों को AI और क्लाउड तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये न केवल भविष्य के कैरियर के द्वार खोलेगा, बल्कि वैश्विक निवेशकों के बीच मॉरिशस की डिजिटल परिपक्वता का एक मजबूत संदेश भी भेजेगा। लेकिन मॉरिशस टेलीकॉम की दृष्टि हमारी सीमाओं से परे एक इलाकाई हब के रूप में स्थापित होने की है, जो अफ्रीका एशिया कॉरिडोर के लिए एक डिजिटल सेतु के रूप में मॉरिशस की भूमिका को और मजबूत करती है। अपनी सहायक कंपनी माइटी मनी के माध्यम से कंपनी अब फिनटेक के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई है। सेशल्स की ई वॉलेट ईबू के साथ साझेदारी करके ये एक अभूतपूर्व वित्तीय गलियारा बना रही है। इस प्रकार सेशल्स की यात्रा पर गया कोई भी मॉरिशस वासी जल्द ही वहां अपने माइटी मनी एप्लीकेशन के जरिए खरीदारी का भुगतान कर सकेगा। ये शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक मोड़ भी है। अपने 20 वर्षों के उपलक्ष्य में प्रमुख ब्रांड माइटी भविष्योन्मुखी नए लोगों के साथ एक नया रूप लेने जा रहा है। लेकिन ये स्पष्ट रहे कि मॉरिशस टेलीकॉम केवल अपनी छवि को नया नहीं कर रहा है, कंपनी अपनी नई महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शा रही है। नेटवर्क वितरक की अपनी पारंपरिक भूमिका से ऊपर उठकर इलाके के अपरिहार्य तकनीकी दिग्गज के रूप में खुद को स्थापित करना।
1: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वित्तीय अपराधों की रोकथाम संबंधी अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गंभीर खामियों और कमजोरियों का खुलासा किया है। जरा विस्तार लुवीना सफी के साथ विधि मासी बुरन का विवरण।
0: भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतों के बाद शुरू की गई इस जांच में मुख्य रूप से प्रेगाबालीन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो एक ऐसी दवा है जिसे खतरनाक ड्रग की श्रेणी में रखा गया है। FCC ने पाया कि इसके नियंत्रण के उपाय अपर्याप्त हैं, प्रक्रियाओं में हाथ से किए जाने वाले कार्यों पर अत्यधिक निर्भरता है, कोटा देने और उनकी निगरानी करने में कमियां हैं, साथ ही रिकॉर्ड रखने और दवा की ट्रैकिंग के प्रबंधन में भी भारी खामियां हैं। आयोग के अनुसार ये खामियां भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेरफेर, खतरनाक दवाओं के दुरुपयोग और यहां तक कि ड्रग तस्करी को वित्तपोषित करने का कारण बन सकती हैं। ये विसंगतियां मंत्रालय को परिचालन, वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों के प्रति भी संवेदनशील बनाती हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए FCC ने शासन और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने, कोटा की बेहतर निगरानी, प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन और देश के प्रवेश बिंदुओं पर जांच को और सख्त करने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा करना और नियंत्रित दवा उत्पादों की विनियामक प्रणाली में विश्वास को बहाल करना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्चू से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देख ली है और वे इसका अध्ययन कर रहे हैं।
1: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक कर्मचारी को लेकर गिरफ्तार किया गया। CEB में लाइन्स टेक्नीशियन 33 साल के मोहम्मद जलालुद्दीन मुहाबीर की गिरफ्तारी से पहले उनके साथ अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने वालिदेपट के एक निवासी को एक फर्जी दस्तावेज दिखाकर ये दावा किया कि उन्हें CEB की ओर से उसके बिजली मीटर का निरीक्षण करने भेजा गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार इसके बाद उन्होंने मीटर में कथित अनियमितता की शिकायत CEB को न करने का आश्वासन देकर उस व्यक्ति से बड़ी रकम की मांग की, जो उन्हें मिला भी। FCC एक्ट के तहत इन आरोपों को भ्रष्टाचार के अपराध की श्रेणी में माना जा रहा है। इस मामले की जांच के सिलसिले में CEB के अन्य कर्मचारियों से भी जल्द पूछताछ किए जाने की संभावना बनी है। मिसले मोदारे मामले में एक नया मोड़। बुधवार को लंदन में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र

0: ये अपील अदालत मार्च में दिए गए फैसले के खिलाफ बरतानी अधिकारियों की अपील पर सुनवाई कर रही है। मार्च में दिए गए फैसले में मिस्टर मौदाहे और तीन अन्य शागस वासियों के खिलाफ जारी निष्कासन आदेशों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि अपील का फैसला आने तक उस आदेश पर फिलहाल रोक लगी हुई है। इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई तक चलेगी। इस बीच ओलिविए बॉकुर्ट का कहना है कि शागस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश कानूनी और आवश्यक अनुमतियों के अनुसार ही होना चाहिए। उनको सुनते हैं।
1: Nous sommes d'accord que tout pays, toute île est dirigée par un État. Et partout dans tout pays que nous allons, nous avons une section qui s'appelle immigration.
2: हमें सहमत होना चाहिए कि सभी टापू एक राज्य द्वारा नियंत्रित हैं और सभी सेक्शन में जहां पर जाते हैं एक होता है इमिग्रेशन। आमतौर पर ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यवस्थित होता है कि जो भी लोग आ जा रहे हैं उनकी कुछ जानकारियां होनी चाहिए, उनके पासपोर्ट पर स्टैंप होना चाहिए। गैर कानूनी रूप से एक देश में नहीं घुस सकते, ये सही नहीं है। हमने 5 बार शागस का दौरा किया जहाँ संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन मिस्टर मौदाहे गैर कानूनी रूप से वहाँ पर गए और ये एक गलत उदाहरण है। अब सब जज के हाथों में है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया है जो मॉरिशस के हक में है और कहा है कि मॉरिशस वो देश है जो शागस की जिम्मेदारी ले सकता है।
0: और ओलिविए बॉकुर्ट ने यह भी आरोप लगाया कि मिस्टर मौदाहे को अवैध धन से वित्तीय सहायता मिली है। हालांकि ये आरोप केवल शागस रेफ्यूजीज ग्रुप के नेता ओलिविए बॉकुर्ट का दावा है। उनका मानना है कि अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, आगे की कार्रवाई का निर्णय सरकार को ही लेना होगा। एक बार फिर उन्हें सुनते हैं।
1: À l'arrivée de Miss Les Mandarins dans East Square, c'est pas quelque chose comme ça, pas comme dans l'échelle de B.
2: सरकार को देखना चाहिए कि वो कौन से कदम लेगी। हम सब इस बात से सहमत होंगे कि इलचुकवे में मिस्ले मौदाहे के आगमन कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। हमने पाया कि इसके पीछे बहुत सारे पैसों का प्रभाव है। निजाय फाहिश के समर्थन के बिना मिस्ले मौदाहे वहां नहीं जा सकता था। इसलिए मैं कहता हूं कि यूके की रिफॉर्म पार्टी मिस्ले मौदाहे का इस्तेमाल कर रहा है।
1: Pour une faire dans un comme ça, quand on dit que tu ne peux pas rentrer d'une façon vraiment honnête et légale.
0: और कलासाइज अदालत में फैसला सुनाया गया कॉगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारी सरवन गोइंदन को मानक पदार्थों की तस्करी के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मामला जुलाई 2018 का है। MSC जान नामक जहाज से करीब 1 किलो हेरोइन बरामद हुआ जिसकी लागत 15 मिलियन रुपए बताई गई। सरवन गोइंदन को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने मडागास्कर से आए कंटेनर जहाज में रखे गए उस पैकेट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। ये सजा जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने सुनाई। सड़क यातायात में सुधार के उद्देश्य से 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री के एजेंडा में शामिल थीं। थयानो में अजय गणेश ने 43 मिलियन रुपए की लागत से बनी नई पिल थियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया। इसके बाद वे फ्लिकोफ्लाक गए जहां उन्होंने 160 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत वाली भविष्य की बाईपास परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। संताना पोसेनो रजनीकर।
3: थियानो इलाके से गुजरने वाले गाड़ी चालकों के लिए अब से एक नया मार्ग उपलब्ध। 43 मिलियन रुपए की लागत में पेलग थियानो लिंक रोड का निर्माण। ये पेचिकॉम ब्रांच रोड को एबेन में M3A40 नए रॉबरावाट मार्ग से जोड़ेगी। इस संपर्क से परिवहन को लेकर बेहतर स्थिति होगी, साथ में मोटरवे M1 में वाहनों की आवाजाही में आसानी होगी और थियानो पेचिका और एबेन के बीच फासले में कम समय लगेगा।
4: Ils commencent à partir bâtiment APIM. Il y a le terminus de rond-point qui est relié avec Terre Rouge Verdun et Grode. La route est loin de distance de 300 mètres et une largeur de 7,5 mètres. Les travaux incluent aussi le upgrading d'un pont existant qui crosse la rivière Plaine-Williams.

0: इसके बाद रुख फिकोफ्लाक, जहां पर मंत्री ने भावी बाईपास के निर्माण स्थल का दौरा किया। अनुमान है कि 160 मिलियन रुपए की जरूरत होगी। इस नए मूल ढांचे का मकसद है मुख्य सड़क के लिए एक वैकल्पिक रास्ता, क्योंकि अक्सर वहां परिवहन समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे फ्लिकॉफ्लाक की ओर और इलाके के स्थलों में आवाजाही में सुविधा होगी।
1: Et possiblement, nous avons un troisième chemin de Volmort à Tamarin. Alors, il y a un grand plus pour nous. On a 14 hôtels d'Officonflac. Un hôtelier extra content et un habitant aussi très content avec ce nouveau développement-là.
2: Il permet que nous un sous additionnel, c'est un savings qui nous fait le projet qui est initié depuis la visite. Vint jusqu'à Cascavel. Donc nous réussissons à faire un savings. Ça, savings, ça nous peut faire, nous permet de sortir de l'hôtel Manisha. Nous prévoir que d'ici octobre, chemin-là, pour avoir fini pareil.
0: ये बात उल्लेखनीय है कि ये दो परियोजनाएं राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने और देश भर में सड़क का इस्तेमाल करने में सुधार लाने के मकसद से सरकारी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है।
3: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान अमेरिकी बलों ने हॉर्मुज जलमार्ग में ईरानी के बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान सेंट्रल प्लाटू और अन्य जगहों पर हल्के बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। रात को आसमान साफ रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 7:45 बजे हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर कादर का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। सावन रोड नोवेल फ्रांस में लोकल शॉप के पास तिरपन साल के 53 इयर्स ओल्ड के श्री जमन सिंह बासुदेल सिंह जो धर्म के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थ ही कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांजीम लेन नोवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। मोसल मोहम फुलबुआ मोंग प्लेंडे पपाई में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री राजकुमार तेंगा जो विद्यानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी सुनीता तेंगाव के मकान मोसल मोगाम फुल बॉमोंग प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। पारिजोलेन मेनिल फिनिक्स में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्रीधनराज जातुना जो प्रीतम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और SMF में पूर्व लॉन्ड्री मैन थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2:30 बजे उनकी पत्नी ललिता जातुना के मकान पारिजोलेन में नील फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। रुईबाज़ विलनुआ मेबर्ग में 75 साल

0: की 75 years old की जनाब ईसा गनसन, जनाब ईसा गनसन जो सईद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा दोपहर 2 बजे उनके मकान हुई बाजा विलनुआ मेबर्ग से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट फोक्यूस रिविया दे क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। F4 Macadam Street, Beju Tombo में 74 साल के 74 years old की श्रीमती माला साधु, श्रीमती माला साधु पैदाशी नाम गोबर्धन और जो ललिता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर दो बजे उनके मकान F4 Macadam Street बेजू तोम्बो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। फैब्रिक लेन मोडालबिया में 67 साल की 67 years old की श्रीमती लीलावती विश्राम पैदाशी नाव शिवनंदन और जो संता के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके पति सुभाष विश्राम के मकान फैब्रिक लेन मोडालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। सेलिको एंटेलम स्ट्रीट अकाजू लेन फॉरेस्ट साइड में 75 साल की 75 years old की श्रीमती शांतिलाल बिकन पैदाशी नाम ओबिलक और जो शांतिलाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनके बेटे संजीव सिंह बिकन के मकान सेलिको एंटेलम स्ट्रीट अकाजू लेन फ्रेश साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाह की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। रेलवे रोड नोथोदाम शुमेला गांव में 69 साल की 69 years old की श्रीमती कुसमी काली जो मैनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11:30 बजे उनके मकान रेलवे रोड नोथोदाम शुमेला गांव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। क्रिस्टचर्च रोड यूके इंग्लैंड में 76 साल की 76 years old के श्री ईश्वर दत्त बोस्टन जो दत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले बोस्टन लेन लाफ्लोरा रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 10:15 बजे उनके मकान इंग्लैंड में उठाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM इन इंग्लैंड। एस एस ओ लेन मोताबा में 93 साल की 93 years old की श्रीमती फुलबसिया रोचियानाई को पैदाशी नाम जगप्या और जो राधिक के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 12 बजे उनके मकान एस एस ओ लेन मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। नंबर पंद्रह लाखवाजे वाले दे फैट पोलवी में 55 साल के 55 years old के श्री अजय प्रीतम जगलाल जो लेले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी सुबह 10 बजे उनकी माँ किस्मतिया नीनुत के मकान नंबर 15 लाखवाजे वाले दे फैट पोलवी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: स्पोर्ट्स न्यूज सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल वर्तमान डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोप की चैंपियन टीम स्पेन के बीच होगा। फिर से लेट शो अर्जेंटीना की ओर से। इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे थी। सेकंड हाफ में एंटोनी गोर्डन का गोल, बचे थे 30 मिनट। कोच टोमास टुखेल को लगा डिफेंस को मजबूत करना होगा, 1-0 की बढ़त बचानी होगी। गलत फैसला, क्योंकि मेसी नाम का जादूगर था वहां पर, हर प्रकार का इलाज कर सकता है लियोनेल मेसी। पैसिव एंड क्रम्बल, टोमास टुखेल का डिफेंसिव टैक्टिक दगा दे गया। 88th मिनट में इक्वलाइज किया एंजो फर्नांडेज ने। फिर 7 मिनट बाद लुतारो मार्टिनेज का विनिंग गोल, दोनों गोल मेसी के पास पर। जब इंग्लैंड ने स्कोर किया 30 मिनट बचे थे, टोमास टुखेल ने एजरी कोनसा, डैन बर्न और निको ओरेली को भेजा एक गोल को बचाए रखने के लिए। इंग्लैंड सीट बैक से सेट बैक। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अब छोटा फाइनल थर्ड प्लेस मैच इस शनिवार को, और द बिग फाइनल न्यूयॉर्क में इट्स स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना इस संडे को लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर। ट्रांसफर न्यूज, आर्सेनल का खिलाड़ी लियांड्रो ट्रोसार्ड तुर्की की बेसिक्टास टीम में जा रहा है। आर्सेनल ने उसे 15 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर बेचा। द गनर्स अब क्लब ब्रुज से स्ट्राइकर क्रिस्टोस जोलिस को साइन करना चाहते हैं। नॉर्वे से एंटोनियो नूसा भी टारगेट है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की नज़र वेस्ट हैम यूनाइटेड के स्ट्राइकर क्रिसेंसियो समरविल पर है, दाम 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। इधर साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के स्टेज 11 में सोरेन वायरेंसवोल्ड की जीत हुई। ओवरऑल लीड में येलो जर्सी तादेज पुगाचा के पास है, 3:36 आगे। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। कल अर्जेंटीना ने द थ्री लायंस के दांत निकाले। द थ्री लायंस हार गए, अब खेलेंगे छोटा फाइनल। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:02 हुए हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद व्यक्तियाँ सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले ओकुले के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रुत का चमिलतेर, जेनेरल दे गोल, मॉन्जेनियर लिन, नोत्र डाम दे लोरेट, रामफल, सामुएल फुक्रो, लाबो डोने, एलियास कुआ, लैवेंडर हिल और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 से लेकर शाम के 4:00 के बीच। साथ में हैं ब्लू बे के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है अवेन्यू कोडोनी, अवेन्यू कारोंग, अवेन्यू एक्रेक के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 9:00 से लेकर दोपहर के 3:00 के बीच। और अंत में हैं

के रहने वाले निवासियों को जिनमें है रेजिडेंस शिबेक सेंट म्युनिसिपल सैगाइटन जुवाल रेजिडेंस लोटस और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन

0: तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए जुड़े रहे हमारे साथ, आपके लाए हैं सुबह का नज़ाना कार्यक्रम।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर

0: श्रोताओ, जब मन में विश्वास हो और कर्म में निष्ठा हो तो हर दिन एक नई सफलता की शुरुआत बन जाती है। आप सभी को हम कहेंगे शुभ गुरुवार और हमारा प्यार भरा नमस्कार आप सभी सुनने वालों को। गुरुवार का दिन है आज और आज है 16 जुलाई 2024। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। वैसे सुबह सवेरे 6 बजे से आप लोगों के साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सफ़र जो है हम जारी रखने वाले हैं दिन के 11 बजे तक। तो चलिए श्रोताओ, शुरुआत हम हमेशा की तरह चिंतन के साथ करते हैं और चिंतन जो है डॉक्टर जमैन जी की प्रस्तुति में हम सुन पाएंगे।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: ईश्वर जीवात्मा का निर्माता है और जब तक जीवात्मा फिर ईश्वर में लीन नहीं हो जाती तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता।

0: चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चलिए हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज गुरुवार आपके लिए इस समय सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, चंद पुराने गाने आपके लिए। 8 बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जाएंगे, समाचारों के उस पार हमारी धरोहर ये कार्यक्रम जो है किरण जानकी की प्रस्तुति में 8:50 पर। और इससे पहले आपके लिए चंद ड्यूएट्स गाने, और हमारी धरोहर कार्यक्रम के बाद आपके लिए भोजपुरी गीत। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। 10 बजे फिर से समाचार पढ़े जाएंगे और इसके बाद भक्ति धारा कार्यक्रम होने वाला है। 11 बजे समाचार पढ़े जाएंगे और 11:03 पर उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में। दिन के 12 बजे गिरीशानी लेकर आएगी तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। 12:30 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी के साथ। प्रीति की प्रस्तुति में मराठी भाषा में कार्यक्रम विविधा 1:30 बजे। दोपहर की 2 बजे आपके लिए मंडारिन कार्यक्रम जिन के साथ। गुजराती कार्यक्रम अमिता की प्रस्तुति में 2:30 बजे। 2:45 पर आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुमिता के साथ सुन पाएंगे। दोपहर के 3 बजे समाचार पढ़े जाएंगे और समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। शाम के 4 बजे भक्ति सागर कार्यक्रम सुमिता की प्रस्तुति में, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयूष धारा और ये कार्यक्रम डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे। शाम के 5 बजे सुमिता लेकर आएगी सदाबहार गाने। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे और इसके बाद चंद फिल्में गाने। 6:30 बजे मंडारिन में कार्यक्रम दाविद के साथ। तमिल भाषा में कार्यक्रम युवारासन की प्रस्तुति में रात्रि के 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वर्षा के साथ। मराठी भाषा में कार्यक्रम शीर्ष की प्रस्तुति में गीत गंगा ये कार्यक्रम 7:50 पर। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम ये कार्यक्रम देविना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे। समीर के साथ महफिले शब उर्दू कार्यक्रम 8:40 पर। और रात्रि के 9 बजे भोजपुरी तड़का किरण लेकर आएगी ये कार्यक्रम। और रात के 11 बजे सुनहरे पर चंद पुराने गाने गिनिशा की प्रस्तुति में। और रात के 12 बजे से लेकर रात कल सुबह के 6 बजे तक आपके लिए चंद प्यारे प्यारे मीठे मीठे गाने। तो हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियां।
1: रेडियो मॉरिशस
2: झलकियां।

स्टूडियो की घड़ी में 7:15 बज रहे हैं। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं, चंद सदाबहार गीत आपकी सेवा में। वैसे हम आपसे कहेंगे कि बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये सब छोड़कर आज का दिन इसे मुस्कान के साथ ज़रूर संजोए। तो चलिए, आपके ये अगला गीत फिल्म अंबर से लिया गया आशा भोंसले की आवाज़ में।

श्रोताओ, आज का नया दिन इसे शिकायतों से नहीं बल्कि कृतज्ञता, प्रेम और उम्मीद के साथ इसकी शुरुआत कीजिए। यह रेडियो मॉरिशस है, यह है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम। आपके ये चंद प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में।

वैसे श्रोताओं, ख्वाब देखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर ख्वाब जो है हम हकीकत में नहीं बदल सकते। इसलिए कहते हैं जिंदगी हर पल बदलती रहती है, हर दिन को दिल से जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है।

श्रोताओ, जिंदगी एक सफर है और हम सभी इस सफर के मुसाफिर हैं। रास्ते बदलते हैं, मंजिलें बदलती हैं, लोग मिलते हैं और बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन हर मुलाकात हमें कुछ न कुछ सिखाकर आगे बढ़ा देती है। सुबह का नज़ाना कार्यक्रम आपके नाम हम सजा रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 बज चुकी है।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, जीवन की राहों में हमें चलना होता है। हर मोड़ पे, हर कदम पे एक नई सीख है और हर सफर ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। ये है सुबह का नज़राना कार्यक्रम, चंद पुराने गाने आपके लिए।

0: श्रोताओं, जीवन के हर अनुभव को हमें स्वीकारना चाहिए, हर रिश्ते की कद्र करना चाहिए और हर नए दिन का स्वागत कीजिए, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत अवसर वह होता है जो हमें बेहतर इंसान बना देता है। सुबह का नज़ाना 7:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म का नाम है प्रेम नगर।
1: ये लाल रंग

0: माफ करना सीखिए और हर पल के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो आज हमारे पास है वही सबसे अनमोल है।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

जब पुराने गीत बजते हैं श्रोताओं, तो ऐसा लगता है जैसे बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठा हो। हर धुन किसी न किसी याद, किसी अपने और किसी खूबसूरत पल से जुड़ जाती है ना।

चलिए श्रोताओं, सुबह का नजराना कार्यक्रम आपके नाम हम कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए एक बहुत ही बढ़िया सा गीत आपके नाम हम करेंगे। कुछ ही घर में 8 बजने वाले हैं और आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार हम वापस मिल रहे हैं चंद डुएट्स गानों को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घड़ी मिला ल फजर के 8 बजल बा। सबको के नमस्ते। संक्षिप्त समाचार समझा। काल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलल गल इंग्लैंड आरी अर्जेंटीना के बीच। आर ई के संगे 60 बरिस बाद वर्ल्ड चैंपियन बने के इंग्लैंड के सपना अधूरा वे रह गल। आर अर्जेंटीना फाइनेंस खाते नपल जगह बना दिले बाटे। स्कोर रहल इंग्लैंड 1 आरी अर्जेंटीना 2। अब सब के नजर जुनबाऊ फाइनल मैच पर रही। फाइनल खेलल जाए रविवार के दिमास के स्पेन आरी अर्जेंटीना के बीच। आपके बता देला कि वर्ल्ड कप के फाइनल एमबीसी 11 आरी एमबीसी प्ले परी दिमास रात 11 बजे देखे सक बजा। मॉरिशस टेलीकॉम देश के तकनीकी स्वरूप के नवादी सादे खातिर तैयार बाटे। देश के प्रमुख मुख्य टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज आरिकाल पाए के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र में आयोजित अपन ऑल माइटी समिट 2026 खातिर डिजिटल और राजनीति के क्षेत्र से जुड़ल सब साझेदार लोग के एकत्र करत बाटे। राष्ट्रीय स्तर के ई जरूरी आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब खाली एगो इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं बखेर ई वित्तीय परिवर्तन के गति देवे होला संस्था के रूप में आगे आवत बाटे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन मॉरिशस में खतरनाक दवा के निगरानी यानी नियंत्रण प्रणाली के लेके गंभीर चिंता जतावत बाटे। वित्तीय अपराध के रोकथाम के अपन रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गो गंभीर कमी आरी कमजोरी के खुलासा करले बाटे। आरे पूछल जाए परी स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू बोलन बाटे कि उनकरा ई रिपोर्ट मिलल बाटे। आरी अध्ययन के जानकारी वो उनकरा मिलल बाटे। मिजे मौदाहे मामला में एगो नवा मोड़। बुधवार के लंदन में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT के अपील अदालत मार्च में देवल गल फैसला के खिलाफ बरतानी अधिकारी के अपील पर सुनवाई करत बाटे। मार्च में देवल गल फैसला में मिजे मौदाहे आर 3 गो दूसर शागुसवासी लोग के खिलाफ निष्कासन आदेश के रद्द कर देवल गल रहल। बखेर अपील के फैसला आयलिक वो आदेश पर फिलहाल रोक लगावल गल है। वहीं अदालत बगल से देवल गल अंतरिम कानूनी सुरक्षा के कारण वो अभिलेख निष्कासित वो नहीं करल जा सकेलन। अब अदालत के ई तय करे के बाकी मार्च में लेवल गल फैसला बरकरार रखल जाए कि ओकरा रद्द करल जाए। विदेश के खबर में अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के 5वां दिन वो ईरानी ठिकाना पर ही हमला करल बाटे। ई दौरान अमरीकी बल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाह पर लगावल गल ब्लॉकेज के तुरे के कोशिश करे होला एगो खाली एयर टैंकर के निष्क्रिय कर दिले बाटे। तय रहल संक्षिप्त समाचार। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: शुभ समाचार सुना जा। सावन रोड नोवेल फ्रांस में लोकल

72 ans que Sri Kemlal Chetia, Sri Kemlal Chetia, जे गुना नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी दिन के एक बज के आधा पड़ी उनकर पत्नी तारामती चतिया के मकान महात्मा गांधी रोड होशते गुडलैंड से उठा के किरा करम खातिर गाँव गोप के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। पॉल मावेन्यू कैट कोको में 40 बरिस के 40 के श्रीमती श्रीदेवी माहिपत श्रीमती श्रीदेवी माहिपत पैदाशी नाम पुलिगाडू आज विला शाह नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी आज उठावल जाए। नंबर 15 लाखवाजे वाले दिफत पोलवी में 55 बरिस के सेकंड सैकों के श्री अजय प्रीतम जे लेले नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी फजर के 10 बजे उनकर माँ किस्मतिया नीनुत के घरे 15 लाखवाजे वाले दिपहर पोलवी से उठा के क्रियाक्रम खातिर सिपाही भूले के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे 10 AM। SSR लेन मौताबा में 93 बरिस के 93 के श्रीमती फुलबसिया होचानाइको पैदाशी नाम जियकपिया और जो राधिक नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी दिन के 12 बजे उनकर घरे SSR लेन मौताबा से उठा के किराकरम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टू डेट नून। रेलवे रोड नोत्रडाम शुमेलागा में 69 बरिस के 69 के श्रीमती कुसमी काली जे मैनी नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माती दिन के 11 बज के आधा पड़ी उनकर घरे रेलवे रोड नोत्रडाम शुमेलागा से उठा के किराकरम खातिर बुआ मौसों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टूडे एट 11:30 AM। सेलिकू ऑन स्ट्रीट आकाजू लेन फॉरेस्ट साइड में 75 बरिस के 75 के श्रीमती शांतिलाल बिकन पैदाशी नामो बिलक आर जे शांतिलाल नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी फजर के 10 बजे उनकर बेटा संजीव सिंह बिकन के घरे सेलिकू ऑन स्ट्रीट आकाजू लेन फॉरेस्ट साइड से उठा के किराकरम खातिर बिगाहा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 10 AM। फैब्रिक लेन मॉडालबिया में 67 बरिस के 67 के श्रीमती लीलावती विश्राम पैराशी नाम शिव नंदन आज शांता नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी दिन के 11 बज के आधा पड़ी उनकर पति सुभाष विश्राम के घरे फैब्रिक लेन मॉडालबिया से उठा के किराकरम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टूडे 11:30 AM। हुई बाजा विलनुअमेबर्ग में 75 बरिस के 75 के जनाब ईसा घनसन जे साइद नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन जनाजा दोपहर के 2 बजे उनकर घरे हुई बाजा विलनुअमेबर्ग से उठा के दफनाए खातिर पॉइंट फोक्यूस रिविया डे क्रियोल के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। पारिजोलेन में नील फेनिक्स में 60 बरिस के 60 के श्री धनराज जातुना जे प्रीतम नाम से जस्सी जानल जाथलन आरी SMF में पूर्व लॉन्ड्री मैन रहल उ गुजरगल हवन माटी 2 बज के आधा पड़ी उनकर पत्नी ललिता जातुना के घरे पारिजोलेन में नील फेनिक्स से उठा के किराकरम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टू डेट 11:30 PM। मौसल मौराम फुल बुआ मौग प्लेंडी पापाई में 70 बरिस के 70 के श्री राजकुमार तेंगौ जे विद्यानंद नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी 2 बजे उनकर पत्नी सुनीता तेंगौ के घरे मौसल मौराम फुल बुआ मौग प्लेंडी पापाई से उठा के किराकरम खातिर प्लेंडी पापाई के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 2 PM। यूके इंग्लैंड में 76 बरिस के 76 के श्री ईश्वर दत्त बोस्टन जे दत्त नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन आरी जे बोस्टन लेन लाफ्लोहा रहत रहलन उ गुजरगल हवन उनकर माटी काल दिन के 10:15 पर ही यूके इंग्लैंड में उठावल जाए क्रमिशन टुमोरो एट 10:15 इन इंग्लैंड। F4 मकादम स्ट्रीट बेजुटोम्बो में 74 बरिस के 74 के श्रीमती माला साधू पैदाशी नाम गोवर्धन आज ललिता नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी 2 बजे काल उनकर घरे F4 मकादम स्ट्रीट बेजुटोम्बो से उठा के
क्रियाक्रम खातिर सिपाही भूले के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुमोरो एट टू

0: एम। देवकादया पुदो विलास में, देवकादया पुदो दो विलास में 51 बरिस के 51 के श्रीमती भगवंती दोहू, श्रीमती भगवंती दोहू जे हेमा नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजरगल हवन माती डूबज के आधा पर उनकर पति सतीश दोहू के घरे देवकादया पुदो दो विलास से उठा के किराकरम खातिर पीतों के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबली सब परिवार संगे हमने के सहानुभूति है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

तो चलिए श्रोताओ, 8:16 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। शेबेक के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रेजिडेंस शेबेक सेंट म्यूनिसिपैलिटी गायतान जुवाल रेजिडेंस लोचुस और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 से लेकर सपहर के 3:30 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए इस समय से लेकर 8:50 पर आपके लिए डुएट्स गाने, और इस कार्यक्रम की पहली डुएट जो है फिल्म ऐलान से लिया गया, उदित नारायण अलका यज्ञ की मीठी आवाज़ों में आप ये गीत सुन पाएंगे।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम जो है ऐलान है। तो चलिए चंद्वेस गाने आपके लिए अगली

0: सेट में फिल्म किचना का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुखविंदर और इस्माइल दरबार की मीठी आवाजों में।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम किसना 2005 की मूवी है ये। वैसे कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुँचते हैं। फिल्म किसना का ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है प्रेम की मासूमियत, बिछड़ने का दर्द और उम्मीद की रोशनी एक साथ सुनाई देती है। तो चलिए गीतों का एक खूबसूरत सफ़र से हम आगे बढ़ाएंगे।

बहुत ही खूबसूरत सनसाना आपके नाम अरिजीत सिंह और कोहली की मीठी आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत है और ये मूवी जो है नई मूवी है इस गीत को आप बेहद ही पसंद करने वाले हैं।

चलिए श्रोताओं, गीतों का एक खूबसूरत कार्रवाई से हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे हर सुर मानो दिल की कोई अनकही बात कह देता है, और ये अगला गीत जो है बहुत ही पॉपुलर गीत है, आज भी अपनी मधुर धुन और भावनाओं के कारण लोगों के दिलों में बसा हुआ है।

श्रोता, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। कुछ तो हुआ है ऐसा ही एक मधुर गीत है जो दिल में धीरे धीरे जमन लेने वाली प्यार, अपनापन और अनकही भावनाओं को खूबसूरती से छूटा है। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से लिया गया गीत।

बिन तेरे आई हेट लव स्टोरी फिल्म से लिया गया गीत आपके लिए। 8:45 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में एक अंतिम नजराना फिल्म रॉय से लिया गया। ये फिल्म जो है 2015 की है और फिल्म जो है अपने खूबसूरत संगीत के लिए आज भी याद की जाती है। इसके गीत प्यार, तन्हाई, यादों और आत्मचिंतन के एहसास को बेहद ही मधुर अंदाज में पेश करते हैं।

0: तो चलिए श्रोताओं, 8:50 हो चुके हैं। अभी आप सुन रहे थे चंद डुएट्स गाने। इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला, हम भरेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। आइए सुनते हैं हमारी धरोहर। ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमनी के धरोहर कार्यक्रम में आप सबको के स्वागत बा। आज 16 जुलाई के एगो बड़ा दिन है, जब आपरे वासीघाट के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल करा गए। और आज यही जगह पर हमनी बातचीत करब जा। जैसे जानेला, विश्व विरासत स्थल आप्रवासी घाट शर्तबन मजदूर के मॉरिशस आगमन के स्मृति के एगो प्रतीक है। और हर बरिस यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करल जला 2 नवंबर के, जब हमनी के देश में पहला शर्तबन मजदूर लोग आ रलन जा। और ई खातिर मॉरिशन सरकार और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड एगो भव्य श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन करेला। और 2 नवंबर के साथ साथ 16 जुलाई भी विशेष है, कहे कि ई दिन 2006 के ई साइट के अंकन हो रहल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर। तो आज देखब जा कि कैसे हमनी के देश में हमनी के पूर्वज के इतिहास गुजरल। आप्रवासी घाट इमिग्रेशन डिपो जोन बा, ओकर निर्माण हो रहल 1849 में। यहाँ पर 99% शर्तबंद मजदूर भारत से आ रहलन जा। और जो बाकी 1% बा, वो लोग पूर्वी अफ्रीका, मारागास्कर, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से आ रहलन जा। इ लोग के ई टापू में अलग अलग शक्कर प्रतिष्ठान में काम करे खातिर भेजल गल। और इ लोग के रहे के भी प्रबंध करल गल। मॉरिशन नेशनल आर्काइव्स के दस्तावेज के अनुसार, रविवार 2 नवंबर 1834 के अटलास जहाज से मॉरिशस में पहला 36 को शर्तबंद मजदूर आ रहन सा। उ लोग के यात्रा 2 महीना तक चलल। कलकत्ता शहर से ई शुरू होल और 36 गो बिहार के पहाड़ी इलाका से मजदूर लोग निकल के यहाँ पर अलन जा। ई लोग जॉर्ज शॉल और बुटनट के कंपनी द्वारा यहाँ पर इ लोग के आनल गल। और मॉरिशस में यहाँ पर उ लोग के जो पहला जगह पर भेजल गल, उ रहल फुलियार। और ये जो 36 को शर्तबंद मजदूर बा, इ लोग के नाम आज भी जब फुलियार जेबा तो तोहरा दिखी। इ लोग आल रलन जा 5 बरिस के कॉन्ट्रैक्ट पर। गन्ना के खेत में सूर्योदय से सूर्यास्त तक

0: ई पूर्वज लोग काम करत रहलन सा। उस समय आल जब पुरुष लोग के 5 रुपए महीना में देवल जात रहल और औरत लोग के 4 रुपया। भारत से मॉरिशस शर्तबंद मजदूर के रूप में शुरू शुरू में औरत लोग नहीं आ रहलन सा, लेकिन धीरे धीरे हमने के देश में मॉरिशस में ये जो मजदूर वर्ग बा उन लोग के स्थापित करे खातिर ये सोचा गल कि कहे नहीं अब औरत लोग के भी आना जाए, ताकि ये जो 5 बरिस के कॉन्ट्रैक्ट बा एकर तहत हर बार मजदूर लोग के भारत नहीं भेजल जाए और फिर से मॉरिशस नहीं बुलावल जाए, एकर पर एगो अतिरिक्त खर्च होवत रहल और एकर खातिर जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बा वो भी थोड़ा भारी पड़त रहल। तो इस वजह से ये फैसला लेवल गल कि अब औरत लोग के भी आनल जाए, यहाँ पर मजदूर लोग रहे लगलन सा बसे लगलन सा और उ लोग के लैका फैका हो लगल। जैसे थोड़ा बोल ली 36 को जन पहला मजदूर लोग रहलन सा उ लोग सबसे आगे गएलन सा फुलियार, लेकिन फुलियार के नाम उ बकत रहल बेल आलियंस शुगर एस्टेट, बाद में एकर नाम बढ़ल फुलियार। और उ लोग सप्ताह में 6 या फिर 7 दिन काम करत रहलन सा, इ लोग के छुट्टी नहीं रहल। 1834 से 1910 तक लगभग 500,000 गिरमिटिया मजदूर आप्रवासी घाट पर अपन कदम रखलन सा। उ लोग मॉरिशस के निर्माण करलन सा और एकर जो इकोनॉमी बा अर्थतंत्र ओके सफल बनैलन सा और अपन पूरा जीवन इ देश के सवारे में अपन परिवार के भरण पोषण करे में उ लोग बिता दिलन सा। रूखा सूखा खा के कठिन परिश्रम करके उ लोग परिवार के भरण पोषण करलन सा, अपन संस्कृति के साथ साथ अपन परंपरा के भी जीवित रखलन सा। उ लोग के श्रद्धांजलि देवे के हमनी के फर्ज बनेला, कहे कि जो श्रद्धा भक्ति और परमात्मा पर आस्था के साथ उ लोग काम करलन सा उ बहुत सराहनीय बा। और आज इ लोग के श्रद्धांजलि देवे खातिर आप्रवासी घाट पर हर बरिस की तरह एगो सांस्कृतिक कार्यक्रम चली और इ बरिस जे लोग सौतेनीय हवन सा मतलब कि 100 बरिस जी गल हवन जा उ लोग के भी बुलावल जाता, उ लोग के सम्मानित करे खातिर हमने के पूर्वज के जे लोग प्रतीक हवन जा। कार्यक्रम के ध्यान से सुन लो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप्रवासी घाट के ओकर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होइला के 20वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्ते।
1: चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पर आज की चर्चा आप अनुराधा की प्रस्तुति में सुन पाएंगे। तो मिलेंगे 10 बजे भक्तिधारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को शुभ दिन हम कहेंगे।

0: मरहबा, ये याशना मिश्रा से समाचार सुनते हैं। नमस्कार याशना।
1: नमस्कार आपको अनुराधा, और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा ही रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए अपनी जगह बना गया। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 और अर्जेंटीना 2। अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी। फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। लियोनेल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा। पहला खिलाड़ी है काफू, जो ब्राज़ील के साथ खेला था। और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार रात 11 बजे आप देख पाएंगे। मॉरिशस टेलीकॉम देश के तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में है, और देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाए के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित अपने प्रमुख औद्योगिकी सम्मेलन ऑल माइटी समिट 2026 के लिए डिजिटल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एक मंच पर ला रही हैं। राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में सामने आ रही है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वित्तीय अपराधों की रोकथाम संबंधी अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गंभीर खामियों और कमजोरियों का खुलासा किया। पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेच ने कहा कि उन्हें इस रिपोर्ट और अध्ययन की जानकारी मिली है। FCC की जांच के तहत CEB के एक कर्मचारी को कल गिरफ्तार किया गया। CEB में लाइन्स टेक्नीशियन 33 साल के मोहम्मद जलालुद्दीन मुहबीर को गिरफ्तार करने से पहले उनके साथ अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने वालिदेपत में एक निवासी को एक फर्जी दस्तावेज दिखाकर ये दावा किया कि उन्हें CEB की ओर से उसके बिजली मीटर का निरीक्षण करने भेजा गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार इसके बाद उन्होंने मीटर में कथित अनियमितता की शिकायत CEB को न करके उस व्यक्ति से बड़ी रकम की मांग की जो उन्हें मिली भी। FCC एक्ट के तहत इन आरोपों को भ्रष्टाचार के अपराध की श्रेणी में माना जा रहा है। विदेश की खबरों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के 5वें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान अमरीकी बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाह पर लगाए गए ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे दीजिए। नमस्कार और शुक्रिया।

सभी सुनने वालों और दर्शकों को नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और बेशक आप लोग भी हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। और आज टेक्निक पर कादेर कुदादीन है, हमारी जो प्रोडक्शन सहायिका है वो है उरुसा, और ये प्रोग्राम आज की चर्चा शीतल लुबिन द्वारा निर्मित है और ये प्रोग्राम चलेगा दिन के 10 बजे तक। और वैसे जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो आज की चर्चा, ये प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, इम्पोर्टेंट मुद्दों पर हम बात करते हैं जो समाज से जुड़े हैं, इस तरह के चर्चा हम लोग करते रहते हैं। और आज जो हमारा विषय है वो है नॉइज़ पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण, एक ऐसी समस्या जो धीरे धीरे हमारी सेहत, मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता पर कर रही है, तो काफ़ी प्रभावित कर रही है इस तरह की जो ध्वनि प्रदूषण। हम मानेंगे कि आप लोग इससे सहमत हैं कि काफ़ी एक, मतलब ये एक ऐसे विषय है जो गंभीर है और ये मतलब राष्ट्रीय मुद्दा कह सकते हैं। और आज इस चर्चे में हमारे साथ इस स्टूडियो में पुलिस दे लॉन्विरोनमेंट कई सदस्य आए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर ओमदत्त सीताराम जी। तो आप स्टूडियो में पधारे हैं, हम आपको कह के धन्यवाद, और आप अपनी कीमती समय निकालकर हमारे साथ आए हुए हैं। नमस्कार और स्वागत है आज की चर्चा कार्यक्रम में सीताराम जी। तो जैसे कि हमने कहा कि हम ध्वनि प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन सुनो पर चर्चा करेंगे, तो ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। और सीताराम जी, सब इंस्पेक्टर सीताराम जी, हम आपसे यही खोजब जाने के, जैसे कि हम बोल लीजा कि ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है, विध्वनि प्रदूषण, ये काफ़ी एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय से संबंधित है, जहाँ जहाँ

0: ई बात जब होला तो ई काफ़ी लोग इस पर कर सेहत पर भी असर होला, क्या बच्चा क्या बुजुर्ग क्या हम लोग काफ़ी हम लोगों के सेहत पर भी असर पड़ेगा। तो हमने के सबसे पहले बताओ कि ई कर कारण कौन सी है, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन ई कौन सी है और कर कारण कौन सी है हमने के जैसी मोरिस में।
1: देखा नॉइज़ पोल्यूशन जो ना हम सभी ऐसा पोल्यूशन सुन वो ई एगो बहुत एगो मेजर प्रॉब्लम होगा मोरिशस में। ई जो प्रॉब्लम बाटे ई तो आदमी के जो हमने के मॉम पब्लिक के वो लोग के ला सौते ये सब घाटे गया आदमी लोग स्ट्रेस होला, लड़का लोग नहीं सकेला पढ़े, जो बड़ा आदमी मलाद बा बिस्तर में रहला वो लोग के प्रॉब्लम है। तो हई खाति हमने के जो मोरिशस में नया कानून लागू करल बा।
0: अच्छा, एकर पर कानून लागू होल बा।
1: कानून लागू बा तो हमने के कैसे बजला लालवा में हमने के कानून में दूगो लालवा है, ठीक है, पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन के दूगो कानून है। एगो है जो ला पुलिस अप्लिक करला।
0: अच्छा,
1: जो ला पुलिस अप्लिक करला ओके बोला सा कंट्रोल ऑफ नॉइज़ रेगुलेशन। तो है सब कानून लाने 2020 में आप चले 1 अक्टूबर से लागू करल बा। तो एगो है कंट्रोल ऑफ नॉइज रेगुलेशन जो में ला पुलिस अप्लिक करला है लालवा। और यहाँ पर हमने के लापारी डिसिप्लिन नहीं, हमने के लापारी डिसिप्लिन में के कान हमने के जो हुई हमने हई नौजवा के डिटेक्ट किया से हमने के ओकर जो एटोसिटी है हमने के कान से तो हमने एस्टैब्लिश कंट्रावेंट कर जो डिजम ला कानून है वो है स्टैंडर्ड फॉर नॉइज रेगुलेशन। कैसे बोल जाएगा स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में एगो बन लिमिट है, कैसे बोल जाएगा डिसिबल है, तो डिसिबल करा था तो हाई ला मिनिस्टर आसमती करेगा हमने के देखब सगरों सगरों हमने के ब्यूरो कैसे बदला सानिधि है। तो वहाँ पर हेल्थ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स रहा वो लोग हई कानून वो लोग भी लागू कर लें हई रहा स्टैंडर्ड फॉर नॉइज रेगुलेशन।
0: अच्छा, ये जैसे बोला ये कानून लागू बा 2020 से, तो खाली दुगो मतलब कौन से आने बा
1: दुगो
0: कानून कौन से आने बा। तो ये कानून में कौन सी नया लागू कर बा
1: अभी कानून तो रहल आगे से भी तो अब भाई नया कानून में कौन चल इमें फिक्स पेनाल्टी चलल बा समझे जो अपराधी है ओफेंसवा करी तो है ओफेंडवा के हमने सबसे फिक्स पेनाल्टी दे तो फिक्स पेनाल्टी से एगो लामान है
0: आगे जैसे फिक्स पेनाल्टी नहीं रहा
1: ऐसे आगे हमने लाखों बिला कर दी सर। अब नहीं, अब सकब से फिक्स पेनाल्टी दे तो फिक्स पेनाल्टी है दे के जिस मिल रुपये ओकर फिक्स पेनाल्टी है लामान ओकर जुर्माना है जिस मिल रुपये जो एगो दिल्ली वैंक जू में जहीं पे करे के सर मैं जो दात से हमने इश्यू करब सर। एगो एग्जाम्पल बताए कि आज एगो अपराधी के एगो देव सर एगो फिक्स पेनाल्टी तो किसी वैंकियन जू मिली पे करे के ओकर लामान एगो लाकू में।
0: तो कबो कबो ऐसे हो जाला कि कनु वैंकियन जू वहाँ में नहीं सकल पे ये
1: हाँ होला ऐसे होला जब नहीं सके उनसे पे करे तो एगो दूसरा
0: तो फिर से वो लोग की चाय पे कर
1: तो हाँ तो फैन से लॉकेट होला लॉकेट करके तब हमने ओके लाकू भी लागे गया जा तब वहाँ पर ओके जुमाना जस्टी फो हो जाला वो तोहफा लालवा में बोल जाला कि मौज एंड राइस समझे 3,000 से जस्टी सके पे करे तो 10,000 के बदले में सके 3,000 लिख पे करे।
0: तो कितना तरह के मतलब फिक्स पेनल्टी
1: हाँ हाँ यहाँ पूछता हूँ जानने के कि जिफिकों का आई के फिक्स पेनाल्टी है हमने के लालवा में है सर्थ शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल सिक्स। तो सर्थ शेड्यूल है जो कैसे एगो एगो एगो व्यक्ति वो ढेर जोर से लामजिक डाले बा तो वो एगो आखिर से झिक हमने के तो ओके सर्थ शेड्यूल ला सर सर कैसे एगो एगो कोई भी व्यक्ति वो अपन लुटो में जोर से अपन लामजिक डाले बा तो हमने ओके सर शेड्यूल डायरेक्टली दिला सर। फोर्थ शेड्यूल जो है वो स्वा एगो कैसे बोला एगो दुटो सिपा एगो व्हीकिल के ओनर के नहीं तो एगो बेंगालो सिपा एगो बिल्डिंग के ओनर के ओके दिला सर क्योंकि ज़्यादातर जाएगा से जब कंप्लेंट दिखे तो देखब कि एगो बिल्डिंग में कैसे लेब एगो बेंगालो में उल्लू करल बा तो वहाँ जेब हमें के डिफिकल्टी वाला जाने के की के हाँ वहाँ पर जो लामिशी को ढेर जोर से डर लेबा तो हमने ओना के जान ला सर तो ओना के दे दिला सर तो हो ओके फोर्थ शेड्यूल ला सर तो क्या करब जब ओके देब फोर्थ शेड्यूल तो हमें पार्ट 1 है पार्ट 2 है

0: हमने जब दे लासा तो ओके डेल डेल लासा पे करेंगे पोपी दवा के कि ओके चाहे वेटियन जूम में पे करेंगे तो अब लौकी की पोपी तो बोली हम तो नहीं कर ले है जुम्मा हम नहीं कर ले है तो ऊ में पोटू है तो उभर के नामवा डाली केके लुए कर ले है
1: अच्छा
0: स्वा केके लुए कर ले तो है अब डाले उभरा के बोले कि है कानूनवा ई जस्टी लागू है बिल्डिंग्स में और व्हीकल्स में जितना बिल्डिंग्स है बिल्डिंग्स जब ले बट घर है साल डिफेट है रेस्टोरों है लोटेल है जहाँ जहाँ ला म्यूजिक खेलला है सब बिल्डिंग्स में और जो गाड़ी है कैसे लुटो ले जो अपन जाने लग जब बुक्स खोल बट देख बट कानो बासू डाल है ऐसे तो उठा पास करेला तो जब ओनर के डिप सक से जुल कर तो ओकर देवो है कि कैजू में एकाटोजू में ओकर में बॉटू भर के रेटूने करके जो पुलिस वा सेवी कर रही स्टेशन सेवी कर रही soit police de l'environnement servi comme le de ou how c'est du catoire et tourner de la carte zoomer tap kaola de hamne ke mil jala ki ke how apradu akaleba ou mena moi le carte la ke ha ou ka sub nic number ou ka contact number sa ba de hamne ko chota sun longit karke de port 5 bhari la sa schedule 5 wa de la sa je nawa namwa mila de la jeune propriétaire wa de la ki etel la musique le ha ou da toi hamne responsable hai ऊहा तो ओके दे देवेला ओकर नाम देवेला तब है सेजिल सैक हमें भर के जो थोड़ा लॉकेट करके ओकर लगे विदा के लगा अब सेजिल सीस का है फॉर एग्जाम्पल एगो पोपीते एगो नाम दे लेवा सेजिल कटवा में जब ओकर नमवा दे लेवा तो ऊ नमवा ढले ऑप्शन नहीं छबा फिक्टिशियस बा सके लगो फोर्स नो बा लेट विदा कर ली सर फिक्स पेनाल्टी बा जब विदा कर सर अति एनरजिस्ट्रे ओ ड्रॉ भेजे के La poste par les habitants de l'Isa, ok, n'est-ce pas? Les toits retournent aux gens. Donc, c'est du loi, si soit côté carré là-bas, au propriétaire d'un de toi, au gré de l'Isa, ça veut dire tout pays. Parce que tout le bâtiment, il y a un noise pollution, une pollution sonore, tout le monde a la responsabilité. Les gars, on a un canon qui se bat, qui est bien à prendre, qui est un groupe qui est un peu plus de pays.
1: Oui, c'est avec le propriétaire qui a alerté au qui est au TV. La police de l'environnement, qu'est-ce concerne la noise pollution? Qu'est-ce que la chicaïette est là, complète? Ah,
0: des
1: statistiques.
0: Augmenter les statistiques. Et le problème de pollution, c'est un national issue. Noise from building tale boli ki house the ghar ba apartment ba hot wedding house ba ab hai sab ta loudspeakers hai na ghar mein janda ton sa loudspeaker la music ka se zor zor se loud hon ja ab noise from vehicles ba
1: vehicles ke bhi badal ja
0: ta kono ba modify kar kaise motorcycle le ba abhi hai zyada no no you don't say this look babule
1: ja ke
0: wo log jaisi modify kar lan sa ta tapas kar lan sa ta loudspeakers ke ba जोन कैसे टाले बोली कॉबूट्स में जोन रहला ऐसा अब
1: मतलब तरह तरह के कंप्लेंट जैसे हो व्हीकल में पर आ बिला जैसे बट लाउड मतलब नॉइज पर जैसे पर आ बिला तो मान लो एक व्यक्ति कंप्लेंट करी शिकायत करी डर्स कर कि ओकर वाजे कहीं तपास होता या फिर कोनो मिटाल वर्कशॉप होला या खुलल बा ओकर भीरी बात जैसी तपास होता इस सब में कौन ची इस समस्या में निपटाने के लिए कौन ची करल जाला
0: तो हमी के जन कंप्लेंट कैसे आगे के मिशन में हम डिजा बोल रहे कि हम के हॉटलाइन में सब कंप्लेंट करे तो ऐसे कंप्लेंट मिला तो हमने मैक्सिमम वो कागज भी देता हूँ मैं चाहिए ला सके और ढेर जे ईयरजो मांगे रहता तो जाला सके तो कैसे मेटल वर्कशॉप बा लेबर मैकेनिकल वर्कशॉप एल्युमिनियम वर्कशॉप ये भी तो घर इतना तपास कर ना कैसे मिटाल कट बट गाइंडर सेवी कर तो एक भी कानून है तो हमने जाए ला सर तो भर सक सेंसिटाइजेशन कर ला सर देखी ला सर कि लोग के पेमी आजू बाकी नहीं वो लोग लीगल में लोग के दुआ बा कम करे कि
1: नहीं तो समय बा कि वो लोग के चाहे ऐसे नहीं कानून
0: वैसे तो कैसे
1: फजीरे से
0: हाँ फजीरे से काम करेगी हाँ तो जिस काउंसिल में कंडीशन डालेला जब पीएमई को देवेला तो लोग कंडीशन डालेला सर तो कोई के पीएमई में कंडीशन नहीं रहेला
1: अच्छा
0: तो हमने मांग कर ला सर जिस काउंसिल से कि कंडीशन डाल दी कि वो सेटन ले में काम कर जा तो हमने

0: कि सेंसिटाइजेशन कर ला जाओ कि जो चीज़ काटे के रही भीतर में बंद करके काटा जब मैं वो पोल्यूशन नहीं करी। अब जो हमें के कॉम्प्लेटो आ गई करेंट रही मिलते रही तो हमें मिनिस्टर ला सौते के लिए ला सर तो लोग के बुला के लापारी डेसीबल लेके मेजरी ला सौ सौ इसकी परमिसेबल लिमिट में बाकी नहीं बा जो नहीं रहा लिमिट में तो मिनिस्टर ला सौते जो बा एक्शन ले बदल सर आप ओफेंस रही तो हमने तो कॉन्ट्रमोशन ले दी गई ला सर ऐसे
1: तो प्रिय श्रोताओं तथा दर्शकों इस समय आज की चर्चा प्रोग्राम चल रहा है और नॉइज़ पोल्यूशन पर हमने चर्चा करते हैं जा तो बेशक ई प्रोग्राम ई विषय से संबंधित आप लोग के पास कोई सवाल हो या कोई विचार हो आप बेझिझक 402-80-85 पर हमने की सकबा सुनने करी तो फिलहाल एक ब्रेक का देर से गुजारिश है एक गाना हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए चलाएँ।

0: आज की चर्चा।
1: इस कार्यक्रम में आप सबको दोबारा स्वागत हम करते हैं और आज का हमारा विषय है नॉइज पोल्यूशन और पुलिस से एनवायरनमेंट से आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में सब इंस्पेक्टर श्री ओमदत्त सीताराम जी। तो सर सब इंस्पेक्टर जी, हमने के सब बोले आजकल के जो युवा है, युवा जो बा वो लोग काहे काहे मोटरसाइकिल में रिशापा मोडिफिक करे लंजा पहले सब काहे एगो लामोद है एगो कौन चीज
2: कैसे बोल भाई इता
1: वो लोग के पैशन
2: हाँ वो लोग के पैशन हाँ वो लोग खुशी रहने से टापास जाएं वो लोग एगो कंपटीशन से पहले लंजा इसे कि कर मोटरसाइकिल जस्टी टापास करी तो वो लोग तो जान नहीं जान से कि कानून का बोला कानून तो उतर एगो रेगुलेशन से अलबन कि चाहला रिशापा के तो डिसेबल करके तो वो लोग हिसाब नहीं कर लंजा ओकर में एगो मफला बोल जाला जो टापास वाके अटनिए करेला जिमिए करेला वो लोग हम मफलवा निकाले हुए लंजा कोई तो देख बट वो एगो नवा मशीन किन लग तो वो एगो अपन एगो और जो पुलिस आप मोबा लोग किन के दूसरा कैटे के लगे लंजा तो ऐसा मोडिफिकेशन हो तो वो लोग के जैसे बोले वो लोग के मन में का है सब बोले वो लामूद है ऐसे कर खोज लंजा तो है कानून जुर्म हो
1: बिल्कुल। तो मोटरसाइकिलेट और लोटो के मोडिफाई कर रिसापों के बारे में कैसे आप लोग क्रैकडाउन ऑपरेशन करे ले जाए
2: हमने के तो ढेर कॉम्प्लेंट वो मिलेला मॉम पब्लिक से तो हमने के होटलाइन में मिलेगा तो हमने जाएला सा स्टूपेन सर्च करे तो स्टूपेन सर्च करेला से तो अब ऐसा मशीन के कॉन्ट्रोवर्शन मिल के फासिल है बस कि जब वो प्लास में रही रहा जहाँ पर तो एगो ओसन मशीन जब आवेला एगो मोटरसाइकिलेट जब उनके पुलिस आप सौंसे है जब वहाँ आवेला तो हमने के दूर ही से जाना चला कि एगो मशीन आवेदा तो के आगे टेक सर आगे टेक करके ओके फिक्स में नाटी ले सर भाई जिसमें डू लाल बाबा एगो है हमने के जो नाल बाबा नॉइज पोल्यूशन में जो कंट्रोल ऑफ नॉइज रेगुलेशन ई में भी जिसमें रूपी है और एगो रोड ट्राफिक एक्ट में है जो लालवा रोड ट्रैफिक में हाउला में बोला सके मोडिफाइंग साइलेंसर सिस्टम कोजिंग एक्सेसिव नॉइज ओकरो भी लामान जिस मिल रुपी है तो हमने जिस हमने ये नहीं कहला सर मोरिस में जितना ला पुलिस बा ऑनचे स्टेशन के सब कोई कर लाई है ये एक्चुअली अटिया है ये बोला स्टूपेन सर्च
1: रोज
2: के रोज कंट्रोल है कंट्रोल होला सब ला पुलिस स्टेशन के लिए बस सब कर लंजा हमने वो भी कर लाजा तो हमने स्पेसिफिक कर ला सर जो एगो प्लास में ले एगो नॉर्मल में मौका में हमने के गो प्लास स्पेसिफिक मिला बा तो हमने टारगेट के ला सर जो एगो निमेरो मिल रहे तो जस्ती हो व्हीकिल वे के टारगेट के ला सर तो के कॉन्ट्रोवर्शन मिला सर इसे
1: बराबर थी। अब ये सापमों के पोल्यूशन सुनो मतलब उसके कॉन्ट्रोवर्शन के जुर्माना कितना लुटो वन कामियों के कितना है बराबर
2: बराबर है 10,000 बराबर 10,000 और उगर बराबर है 21 डेज ओके दिला सब पे करके और कैसे टालेर स्पीकर के लिए नहीं पे गई तो ऊला मनवा सकी लॉकेट हो लाकू में सकेला टॉफा प्लीज पे करे तो हमने कहता कानून तो बहुत सख्त बा तो पब्लिक के चाहे कौन पहुँच के सेटू जो ऑफेंडर्स वन बा जो है मासिन और मुजिफी करला वो लोग के चाहला वो लोग में सांस में मोर्टालिटी वगैरह जाना सांस में रह के वो लोग के नहीं सके इनसे ऑन जनरल पब्लिक के दे ऑन से करे
1: और वे तो वो लोग के कॉम्पिटिशन हुआ कब कब रात के भी होला तो इमें भी फ्रांसवा के बारे हुई

0: पारे हाँ तो हमने काकडाउन ऑपरेशन है में ढेर कर्मचारी लोग जो पुलिस के बा एस एस यू लोग हमने के डिविजनल सब इन्वॉल्व हो जा देखा कब वो गाली होला तो इसने इसने मशीन दे बार टपास गए ला एक में तो एक ऑपरेशन ऑर्डर निकले ला एक डिविजन में जहाँ पर हो तो वहाँ पर है सब काकडाउन ऑपरेशन होला तो कॉन्ट्रोवर्शन ली बोल गया और हमने वो फासों के गला से कि है सब जिमिनी हुई आज जिमिनी होता सब तो बोले
1: अच्छा और ट्रंप के इस्तेमाल के बारे में कोई कानून बा
0: और ट्रंप के कानून कैसे बोल गया उसका जगह है जहाँ पर नहीं चाहे ट्रंप करे और कोई है अपन देख बता मल्टी होम डालेगा जिफिलों का आई थी कि ट्रंप रहला जब ट्रंप कर बता जिफिलों सौ करी हम सब दुआ नहीं ये वो कौन तो हाउ जोन लिबा डिफरेंट प्लास में कैसे लेकुल लगे लाकू लगे लोपिटल है सब प्लास में कानून बोला कि है सब प्लास में नहीं चाहिए टोपे करे देख बा पानो डाल बा नो होनिंग ये सब तक कानून में है जब जेब तू अपन लाइसेंस वे निकल बट देख बा ये सब है तो मागे कि है सब है पढ़ के गलवन जा तो देख बा सब टोनो पर है सब करे लग जा लोग तो हमी है जो लेकिन बा हमी अपन बगल से जितना सकी ला सके जो कोशिश करे सब नहीं कही ला सक
1: अच्छा कैसे तय करबा कि एगो गाड़ी में एगो व्यक्ति बहुत जोर से है या हद से ज़्यादा वो लोग अपन ला म्यूजिक डाल ले बात कैसे आप लोग की जाने ला जाइए कर बार पर
0: देखा हमने तो ऑथर नहीं सर ला पुलिस टालर कैसे बोली हमने कि वो कानून है कंट्रोल फॉर नॉइज रेगुलेशन तो कंट्रोल फॉर नॉइज रेगुलेशन में चार गो एलेमो है एगो बोला कि हाउ जो इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी बा जो टापास बा कि कितना बार कि कैसन बा ओनली इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज एज परसीव बाय द ईयर तो वो हमने के ला पुलिस के कान से देखो से इंटेंसिटी कितना बा
1: बढ़िया बा कितना
0: ज़्यादा जोर बा फॉर एग्जाम्पल एगो डिस्टेंस में से 50 मीटर से 100 मीटर से सुना था और नॉइज बा टापास बा सुना था जैसे जैसे आप प्रोसीव रही सर इंटेंसिटी मोटी हुई जाता फिलहाल में जब और जगह हवा में जहाँ गैली से जहाँ पर रोल दुआ में से लाम सिकवा खिलाता तो वहाँ ढेर बहुत जोर से वाह तो है इसे हमने इनोसिफे के ऐसा कि है नोजवा ढेर फोर बा और ढेर एलिमो बा चिके ला खेल ऐसा कि कौन ला पा गई बा कई गो ला पा गई डलेबा कैसे कौन आदमी डलेबा कान हो बास 10 गो लाउड स्पीकर डलेबा तो ये सब एगो एलिमो हो लाकू खातिन कि 10 गो स्पीकर डाली तो उठा कसके में बजी और जहाँ देखे कि आबिदाशों बाकी नहीं कैसे इंटरफेरेंस बोल रहा है जगह में बोल रहा है इंटरफेरेंस कि पब्लिक लोग के डिरोजे करता कि नहीं तो नॉर्मल एगो एग्जाम्पल होता है कि एगो सॉन्ट ला विल में डाल दे ला जा म्यूजिक तो नॉर्मलमो डिरोजे करता बोला में वो में करते हमसे डलब तो बोला में वो में ढेर कोई जाके ला म्यूजिक खेले ला ढेर जोर से तो ये हई फासों में हमने सब इंटेंसिफिकेशन हमने के लोग के ऐसा है लालू हवा हमने डापे सामान है कैसे बदला थे आप जो है चार गो एलिमेंट हुआ है से हमने पूरे के साथ कैसे हुआ
1: और ऐसा स्थिति में जब ला पुलिस जाए या लोग की मतलब मनाने का बोलने लग जाए ये सब नहीं चाहे तो कैसे कौन कौन रिस्पॉन्स रोला
0: देखा भर ढेर कोई सुने ला पुलिस के बोला सा कि जिमिनिया करेंगे हमने नहीं बोला सा कि तय कर देखें
1: जिमिनिया
0: करेंगे जब लोग के ला कि एगो नीवो कैसे बोला कि सुनाब बा तो हमने अगर कॉन्ट्रोमोशन ले ला सा भी और वो रिजोनाब वही में उड़ते रहे ला सा हमने वहाँ से नहीं ला सा अब कोई है उन्हें नहीं अति करी कोई है नहीं नहीं आप सकेला जब चल जाप से वहाँ से एक बार फैन से डाल देला तो हम पब्लिक के जनाई खोज है कि हम इस सकब से फैंस आके डू वाला सकब से कॉन्ट्रोमोशन ले ओके तो जो नदमी नहीं करी था उनके पड़ेला ओके सकब से हमने स्टेशन जाने ओकर नेम एड्रेस सकब से सर्टेन करे जिस सकब होकर डैनियल रिकू सिख मजा नहीं ऊ एक्सेप्टिव सकब से लापारी हुए होकर निकाल दे उनमें से सकब से सीजी कर दे कैसे बजा सीजी लालवा में हमने किया ये वो पब्लिक प्लेस में रहे तो सकब से लापाराई सीजी करके ओके एग्जिबिट दिखा रखे के तब लाकू में जब केस हुआ जब फिनालिजे हो जाए तब वो लापारी
1: वापस कर तो सब इंस्पेक्टर जी अगर एगो व्यक्ति फोन करके बोली कि ओकर पड़ोसी के जो एनिमल से संबंधित कुत्ता बहुत भोंकता कि परेशान करता

0: तो आप लोग कैसे सुलझावे लाई पर?
1: हाँ देखा ई लालवा में कैसे टाले बोलिए हमने के कंट्रोल ऑफ नॉइज रेगुलेशन में एगो सेक्शन है यहाँ पर बोला कि एगो व्यक्ति के कोनो भी जानी मुँह नहीं रखे के ये ऐसा कि वो ढेर हों से करी कैसे कुत्ता बाटे ढेर भोंकी डॉग बॉकिंग्स बोल रहा सा तो खाली में एगो कंप्लेंट गई भी देखे तो जब गई रही सतह हमने दूरी में वह घर पहला को जाके घर हुआ इडेंटिफाई कर ले जा कहाँ पर से ऐसा नहीं हुआ मुकेला एगो सेकंड मिनट में आ गए थे के सुना था ऐसा तो देखा जैसे कि कुन ये चिट्टू ना कोई पासे होता कोई नहीं तो कुछ नहीं मैं वो कुटवा भूखते बा 15 मिनट तुम्हारा लिसा वो भूखते हुए बा सौ कैन रिजों उठा लेके बेला भूखते हुए बा जब फिर गए सा वहाँ पर तो भूखते हुआ बा तो वाजा है जो कंप्लेंट कर लगा कुछ में रखेला तो ये कुटा रे बा आधा घंटा कुन ये चिट्टू भूखते रही था तो
0: नहीं
1: छपा ना तो हमने कि लालवा हाँ जे वो एनिमल वो जब अननेसेसरी ऐसे बॉकिंग रहला तो जो व्यक्ति वा के
0: कंप्लेंट
1: करा था उसकी एगो डिक्लेरेशन करे एगो स्टेटमेंट दे तो हमने जाके वहाँ पर एगो देखे से इडेंटिफाई कर इसकी यही प्रॉब्लम हुआ बा तो हमने सकब से ओके कानून बदला लालवा में ओके ओके लाकू भी ला करे कानून में है हमने के आर कारी टे कंप्लेंट कोई तो कंप्लेंट करेला कैसे चर्पिंग ऑफ बर्ड्स कोई है लिलवाज करेला जुआसु कैसे बोला ठीक है जिफेरों का ही कैसे टूटा बाहर महीना ऐसा बाटी कर लंसा तो वो लोग ढेर मना एगो काजुट में डाले रह लंसा ना तो वो एगो सेटन लैम में नहीं खाई के डेली कर बटा देख बटा टबाज करेला तो ऐसा भी कंप्लेंट मिलेला
0: अच्छा
1: तो सेमा हमने जाए ला सा तो सेंसिटाइजेशन जैसी कहला सा तो सेमा मिनिस्टर के सब ले जाए सा ऐसे मिनिस्टर बाटे ला संते के बा एग्रो बा ऐसे जो जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व सकेला हुई में तो वो लोग के भी हमने लेके जाए ला सा वहाँ पर एगो साइड विजिट कर सा जॉइंट तो एगो सोल्यूशन खोज ला सा जे रही कोनो ऑफेंस डिस्क्लोज हुई तो बराबर ओके लाकू भी डाक ला सा जब नहीं रहेगा तब हमने कंडीशन डाली ला सा मिनिस्टर कंडीशन डाली कि देखा ऐसे रखा जब मैं प्रॉब्लम हुआ जैसे कैसे बता सके रिजूड हुई हमने भर से खोज ला सा कि बन मेजर देखे कि बन अभी पेट में जल बिरा सा कि सोल्यूशन देखा सा एगो प्रॉब्लम के भर से सोल्यूशन खोज ला सा
0: मतलब हर तरह की शिकायत रहेला ना कि खाली लुटो गाड़ी के घरों में भी जैसे कुत्ता जैसे एनिमल्स
1: सब
0: रहेला
1: बर्ड्स भी हाँ ऐ सब भी एक तो हमने के कंप्लेंट ऐसा भी मिल रहा सकब हमसे कि ओकर मुर्गा जब भौंकेला हाउ के भी कंप्लेंट कर जा कि सुबह हरे हर वक्त मुर्गवा भौंके डरो के ओके
0: दापाज
1: तो जाके हाई में तो सेंसिटाइजेशन का सब करे मुगवा तो तो उकर काम मना भोगे के तो सर तो इसन भी कॉम्प्लेट मिले लामने के
0: अच्छा सब इंस्पेक्टर जी हमने के समंदर में बहुत बात हो गजा प्लेजर बोट्स कतामारों याच बाते तो इस सब में भी कबू कबू सुनी लजा जोर जोर से म्यूजिक खेलावे लंजा तो इस स्थिति में पुलिस एनवायरमेंट इनमें भी इंटरवीन करे लजा कर लंजा
1: हाँ हमने इंटरव्यून ऐसा कंप्लेंट मिले ला हमने के जब बोल सा हम ही जब पुलिस एनवायरमेंट आजिया हो लाए में कैसे लोकल पुलिस बा वो भी आजिया हो रहा नेशनल कोस्ट गार्ड भी आजिया हो रहा में हाई बन हाई कावन में हमने बोट्स व्हीकल में नहीं डाली ला सा बोट्स ला कोस व्हीकल में नहीं है फिक्स पेनाल्टी नहीं डाला सबने का होला देखा का है होला ये सब
0: इसी समंदर में बचे कोस्ट गार्ड जैसी इंटरव्यू करी ला जा हाँ
1: ठीक कोई जाला ना उल्टा रिलैक्स हो जाला कहता मारो में जीन सा तब फिनाल में जब रेटिनो लगे सर तो ला म्यूजिक जब बो में आवेदन सर ढेर कॉम्प्लेन मिला आवेदन सर जब बो ला में जहाँ पर आबिटों लोग बा जहाँ पिकनिकर्स लोग बा वहाँ ढेर कस के लामिजिक जाना सर हमने ये कॉम्प्लेन मिला तो हमने सू लाल वाला हई लाल वाला में कंट्रोल ऑफ नॉइज रेगुलेशन से मैं फिक्स पेनाल्टी नहीं ले रहा सर ओके कॉन्ट्रोमोशन लेके ओके लाकू पीड़ा दे रहा सर तो कल भी वहाँ जब लाकू में जाए तो माजी सा ओके हाउ जिसमें लू पी ला मानवा दे सर मैं हई के प्रोसीजियर दूसरा बस हमने के कानून व्हीकल्स और बिल्डिंग्स बटियाला बोट्स नहीं बटियाला तो खातिर नॉर्मल प्रोसीजर कैसे बता हमने नॉर्मल कॉन्ट्रोमोशन ले रहा सर लीव में लिख के ओके बिदा के सलाकू
0: दोनों पर उतना पास वाने चाहे लाख
1: मतलब जब हाँ, वो भी आप देखा हमने तो हमने इंटरव्यू किया सर को नेशनल कोस्ट गार्ड भी हमने के कुड़ में दिवला और लोकल पुलिस भी कुड़ में दिवला तो हम तो मांग करते कि जेब लामेट जा अपन आमिजे करके आओ एगो लामिजे के दरबार एगो टोंग की

0: mais dans la jamais quoi qu'elle est dérangée qu'elle est n'est dérangée qu'elle est t'as mis interview n'est qu'elle a fait tourner et jacquine avec quelque la mandé qu'elle est ici
1: t'as t'as bien bolla tu un viacti ulangan karila donc f pn yani qui fixe penalty notice ok dévoil jala तो अगर वो व्यक्ति मतलब जुर्माना सही वक्त समय पर अपन नहीं मतलब चुका पाए रहा तो कौन कदम ला पुलिस से बोला जैसे पैती एंजू के बोला
0: देखा एगो वो व्यक्ति ला म्यूजिक ढेर जोर से डाल देवा तो हमने ओके फिक्स पेनाल्टी दे सा तो हमने के ला पुलिस के रहला वेंटी एंजू दे गए वेंटी एंजू में दे ला सा तो दुनजात से दे ला सा तो वेंटी एंजू ओके रहला पे करेगी disons à dire quand on change les ça les disques qui ont servi que ça les disques c'est 21 jours quand que ok dit là ça paye que dégage c'est n'est pas que là t'as amené ok et
1: c'est très bien
0: l'enquête là ça ok boulaye là ça et que l'enquête dès que ça pousse à bien carré n'est pas que là t'as au bar ça que boulaye qui paye ça n'est rien là soit boulaye papier bilagal bas au logo horizon de où l'anja t'as horizon un dalke ok la cou bilagal là ça t'as qu'il y a qui soit là la cou là t'as moi mais c'est ça qui s'est boulé qui pourquoi la loi même il dit que ok more than three ça veut dire tine là c'est zada ou du moins on va payer carré la loi t'as sévère bah 10,000 et payer carré habite la blacou mais j'ai que 30,000 payer carré que ça car beaucoup carabana on te demande que tu qui déjà et que la loi est censée sévère bah bird sac jitna sac bah après la musique dala n'est pas vrai que la musique et vous avez fait important acha नहीं बोले कि नहीं अच्छा मैं सिर्फ मैं चाहना कुछ नौकरी सुना अपन खाली नाम इसी डाला
1: तब त्योहार रहेला कबो शादी सामाजिक कार्यक्रम भी होला तो एक कौन कौन बात चुन मनी चुन नागरिक चुन हो लोग के पर चाहे ध्यान दे के
0: हाँ देखा लाल वावा था यहाँ पर हमने के कॉम्प्लेंट मिला नॉइस फ्रॉम किसी बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप
1: ये वहाँ पर भी
0: यहाँ पर पूजा कैसे ले बा मंदिर में ले बा आजान के जो ले मुस्के के अब ले कैसे बोले असम्बली डीजे वो भी एगो प्रॉब्लम हमने के कभी ढेर क्रिए करता नहीं बताओ लोग ला म्यूजिक ढेर खेल एस सी मोस भी खेल तो हाई तो बहुत सेंसिबल सेंसिबल इश्यू है कैसे बोले हम जाके ज्यादा तक सेंसिटाइजेशन कहला सर सेंसिटाइजेशन कहला सर कि ला म्यूजिक नहीं खेलाएंगे ढेर जोर से एगो टों के चुनाव में डाले के तो हाई जब इश्यू आ रहा था इला में जोन मिनिस्टर बाटे ला संते वो लोग के ले जाए ला जिससे काउंसिल के भी ले जाए ला काहे वो लोग पेमी ले बेलन जाए ना एगो प्लेस ऑफ वर्शिप के एगो जाना एगो परमिट जिससे काउंसिल से बोला सा बिल्डिंग लैंड यूज परमिट वो पेमी हुआ चाहना रहे के तब सब वहाँ पर पूजा करे तब जब नहीं रह लाते जिससे काउंसिल वहाँ पर लोग के स्टॉप नोटिस सकी दे मिनिस्टर ला संते अपन ला पाके ले जाके देखे के ला कितना डेसिबल बा कि इसकी 65 डेसिबल से जस्ट ज़्यादा बा तो वो लोग के बोला बेसे करके तो कंडीशन डाल रहा सर तो इसे हाई सब एक सोना टन करेगा समय
1: तो इस विषय पर आप लोग के पास अगर कोई सवाल हो या कोई विचार हो बेझिझक 402-808-5 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं।

0: इस प्रोग्राम में आप लोगों का दोबारा स्वागत हम करते हैं। 4028085 पर अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं और विषय है नॉइज पोल्यूशन। हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सब इंस्पेक्टर ओम दत्त सीताराम जी, जो पुलिस लॉन्विरोनमेंट से आए हुए हैं। और अभी सब इंस्पेक्टर जी, अभी जब कंस्ट्रक्शन होला देखा चला, इनमें भी कोनो शिकायत आवेला कि हम बहुत ढेर टपा बा, कबो कबो मतलब वीकेंड में भी ऐसा, जैसे जिमांश के दिन हो रहा था।
1: हाँ, ऐसा भी हमने के कॉम्प्लेट मिला कंस्ट्रक्शन से, का होला कि ज़्यादा तक हमने के स्वा ले अप्रैल ले काम कर रहा, कोई रात के काम कर रहा कंस्ट्रक्शन कर रहा, कोई हाँ वीकेंड में से टू जिमांश के जब मजबूती आदमी काम कर पूछे कर रहा, तो हमने ऐसा कॉम्प्लेट मिला कि कंस्ट्रक्शन होता टपाज होता, तो ऐसा काम में हमने जाएला सर तब भरसक जाके सेंसिटाइजेशन कर रहा सर बटियाला जाके देखा, जब जितना सकब कि तेल ले से तेल काम कर रहा है, जिमोस के नहीं काम कर रहा, जमीन नहीं देखों से कर वासीनाज के देखा, वो लोग के तक वो पैमी मिलल रह जिसे काउंसिल से कि ओके वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ करेगी, वो पैमी बा सकी करे मैसेमा वो लोग के बाहर के काम करेगी। हाँ, तो हमने बोला से काम सकब करे मैसेमा वॉकिंग डेज में काम कर रहा, ऑट वीक डेज का काट रहा काम कर रहा, रात के नहीं काम कर रहा, जिमोस के नहीं काम कर रहा। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेन भी मिला कैसे जिसे भी है देख बार कहूँ पर वो जो मोटो से अपन घूस फोड़े ला रहा है, सब भी काम कर रहा था, उधर बहुत दूर ले सुना ला नहीं टापासवा नोज एगो नोज पोल्यूशन में लिखाना, तो ये लोग के भी हमने बोला जा कि काम करवा तो एगो सेटन ले में काम कर रहा, जिस वीकडेज में काम कर रहा ऑट वीक डेज का काट रहे कानून में नहीं है, मैसे में हमने सेंसिटाइजेशन कर ला सर बोला सर कि ऐसे करब तो कंप्लेन में सगरों चाहे हमने के ढले को बैलेंस करके हमने पब्लिको नहीं सूफे हो न वो लोगों सूफे हो, वो लोग काम करता ये तो कोई के चोरी नहीं करता ना,
0: तो लोग के जैसे जैसे मौका मिले ला रविवार के दिन तो वही से ऐसे करे ला तो
1: नहीं तो जब ऐसे करियन जहाँ जब कौचनीय होला तो हमने जो मिनिस्टर कौंसिल है कैसे जिससे काउंसिल बा मिनिस्टर ला सौंटे बा मिनिस्टर लॉन्विरोनमेंट के सबके एगो बोला के जो सर्विस के रहा तब नोटिस दे रहा कि तेल जो नहीं काम करे के जो कैसे बोल रहा हमें कानून जो बा एनवायरमेंट एक्ट में जब हम एगो नोटिस दे रहा जो बोल सर नहीं करे के तो वो लालवा वो जो करी तो जुर्माना सा कि 100,000 तक हो जाए। हमने के मिनिस्टर बा जो एक्शन ले के हमने के सब कार्य कानून यहाँ बा हमने

0: service akap sakade pan kanuman. Abjin nai abai kerita uta uluke ta jurmana wa rahi pe kareke uluke sakap sa lapare bi sia jikade uluke ai kanuma me se ha ki u continuous e go nuisance kata e go pollution kata te sa bo ko lapare bi sia jikade.
1: अच्छा जैसे अभी तबिया बोला कि रेस्टोरेंट में जाके जब कनोटा पाजे है लास पा एको बिल्डिंग एको जहाँ वर्कशॉप मेटल इंडस्ट्री सब तब जब एको बंगालो जो प्राइवेट है उमें सब आप लोग जाके सपा वहाँ तो नॉइस वो तपास होता तो इमें आप लोग भी सब जाए हुआ दिखे सपा इंटरवेंशन लेके
0: हाँ जब से देखे नहीं जैसे इसे कॉम्प्लेंट में लिखा प्राइवेट ने बा पब्लिक है तो हूँ मेरी हमने जाप सा कंप्लेंट देखे प्राइवेट में एक वो प्रॉब्लम हुआ और पब्लिक देखा पब्लिक में हेल के सकब से वो प्रॉब्लम होता जे देख बा कि नुजन सोआ नहीं सॉल्यूशन नहीं मिला था वो कंटिन्यू होता तो हमने के ला पुलिस के कॉन्टरवेंशन प्लीज हमने के वो एगो ला लॉ बोला कि सकब से लोग ला पारी सेजी कर दे पास कि ला पारी हुए ना तो उठा नुजन सोआ बा वो सकब से सेजी कर दे हाउ पब्लिक प्लेस में है कैसे वो रेस्टोरेंट में रही से पाए वो होटल में प्राइवेट में नहीं प्राइवेट में नहीं सकब सा ले हमने सकब सा जाके सीजी करे वो सब एगो डेनियर हो गए सकब सा एगो माजिस्ट्रा लगे जाके एगो वारंट सीन करा के जब वारंट वहाँ सीन करा दी जब तब हो वारंट वहाँ रख लेर हब जा जॉइन दिन है कॉम्प्लेट में भी हो वारंट ने कही जाब सा घर में हेल्प सा बोल सा तो है यहाँ के प्रॉब्लम नहीं रही होता लापारी उठा के आने सर लापारी यहाँ देखे लॉकेट करब सर के जब लाकू जाए तब हुआ माजिस्ट्रा डिसीडे करी कि लापारे रिटूने करल जाए कि नहीं रिटूने करल जाए तो है तो एगो प्रॉब्लम माना एगो समस्या है जो पब्लिक जो ला म्यूजिक ढेर रहा था तो हमने के इतना लालवा हुआ था हमने भर सक मिनिमम फोर्स कैसे बदला सही के ला सा एक एक कुछ जगह नहीं बोला सा कि फिजी निकाला जा मारा नहीं हमने शुरू से सेंसिटाइजेशन का इला सा नहीं कॉम्पोन होता कॉन्ट्रोमोशन इला सा कॉन्ट्रोमोशन नहीं मिली तो उकल लाहो आर लालवा बा तो हाउ सब कानून सब सही करे तो हमने नहीं खुशी ला सकी मैक्सिमम फोर्स में आके हमने मिनिमम फोर्स में खुशी ला सकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए.
1: जब वारंट की बात बोला अभी तो ऐसे ऐसे देख के डर लग जाला पा गो वारंट हाँ. बाकी कुमार जैसे पा ओके चाहे एगो मतलब डिफिसिल बा कठिन बा कैसे कौन सी बोल बा
0: नहीं तो देखा जब ऑप्शन कार रही परिला ऑप्शन कार जब उब्लीजे करी तो ले के तरह परी लेके ना एगो प्लस में जब प्रॉब्लम नहीं है रिजोल्व होता तो हमने चाहे ला एगो सोल्यूशन खोज के ना तो यही हमने के डेनियर रिकूर ला लॉ में है ला कि सकब से वारंट लेके जाके ओकर कॉन्ट्रोवर्शन भी लेप सा ओकर लापारी भी सेजी कर दे सा तब लापारी से पा एक बरिस दो बरिस दो तीन साल के बाद सेजी रही हम ही लागे रख रही जब ले पूजे ने कस लाकू ना ई सब जब का ओब्लीज जब बिन ए नेसेसेयर बा सकब से
1: तब वारंट किस काम आबिला
0: तब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो देख बा ढेर बंगालो बा ने दे बा कैसे वेस्टर्न में ले बा फ्लिक ऑन फ्लैक नॉर्थ में दे बा ग्रैंड बे पेरे बे हाई ब्रल हाई सब जगह वा में ऐसा प्रॉब्लम न होला देख बा जोन व्यक्ति बा ओपन बासी मोल लुए कर दे हर सेमेन के हर रोज देख बा ला म्यूजिक बा जोन रेजिडेंट वहाँ हमारा रहता रोज ओके पहला रोज सुविधा करके ट्विटर एक सेवन में एक बरिस में एक रात हो जाता तो कल एगो दूसर जाता परसों एगो दूसर जाता तो जिफे वो आदमी जाता तो जिफे वो आदमी तफाज रोज कराता तो जी के जो वहाँ आदमिया रहता ओके पहला सुविधा हो के तो ऑप्शन प्लस में जगह में जेब तो जिन आदमी नहीं समझी ठंड के पहला ऐसा लालवा सब अप्लाई करके.
1: और कबो कबो जब पड़ोसी लोग टेलीफोन करे जबकि में तपास मतलब जान जाए मतलब हमारे पड़ोसी में ओकर हियाँ बहुत ढेर तपास होता है म्यूजिक कस के जा रहा था तो कॉम्प्लेंट कर दे वो तो प्रॉब्लम नहीं हुई हो पड़ोसी अगर कॉम्प्लेंट कर
0: नहीं देखा जब कॉम्प्लेंट नहीं देखा कोई है अपन नाम बोलेगा
1: हाँ
0: वो खुशी ला बोले के कि हम है कॉम्प्लेंट करता आप कुछ तो वो नहीं सकता सही ढेर कॉम्प्लेंट इतना नहीं होता कि वो अपन नाम देवे ला वो एक्सेप्टिव ला लाकू जाए कि तो कोई है एनोनिम रखेला वो नहीं खुजला प्रॉब्लम गाय है के अपन अपन वासन संगे प्रॉब्लम हुई के नहीं खुजला तो वो लोग हमने अनोनिम रखी ला सा हमने जो ना पुलिस में अभियान में ऐसा और लोकल पुलिस जे भी बा हमने बोला सा कि हमने कब्बो कॉम्प्लेनेट जो जो नदमिया

0: जन कम्प्लेन करलक ओकर नाम नाम नहीं बोलास नहीं जीवी के कैलास काहे जे नाम बोल देस जैसे लाकुड़ी सुहाँ से जाए तो देख बट झगड़ा लगी सकी साप निकले ऐसे ऐसे भी होबा ला म्यूजिक खातिर जान भी चल गल बा
1: अच्छा होता कि अनोनिम रही
0: अनोनिम रही नहीं बोला और लापुलिस से हम तो हमी के लिखित नहीं बोला और हम मांग कर कि सब लापुलिस के कोई के नहीं बोले के ऐसा जब कंप्लेंट मिली कि नमू नहीं चाहना पूछे खाली जैसे गोली मुँह कॉन्टैक्ट ले ला हाँ कहाँ पर प्रॉब्लम बा एक्सप्लेन कर दे ओकर गोली मुँह कॉन्टैक्ट ले ला जाके ओकर कंप्लेंट देखा नहीं बोला हुआ कि कंप्लेंट कर लेबा नमिया पूछबो कही तो बोला देखा अभी तो यहाँ के कर लेबा जब मैं ऊ नहीं जानी के कंप्लेंट कर लेबा जब मैं ऊ नहीं जाए कोई से झगड़ा नहीं करे कोई लामेर मो नहीं करे
1: अच्छा अंत में हमारे श्रोता के कुछ हमारे क्या संदेश तक बदी हुई
0: देखा हमार हमार हम देखा हम तो बोलते कि जहाँ हमने के हमारे के वाजिनाज के रिस्पेक्ट के करिए रिस्पेक्ट जहाँ रह के हमने अपन लालवा के रिस्पेक्ट करी सर लालवा इसी बात है हमने अपन लालवा के नहीं सबसे उल्लंघन करे हमने अपन लव विहोन में के रिस्पेक्ट करी सर और हम मांगते कर दी कि तोहर लगे गो को फेत बा तो अपन जो वाजें पा ओके चाहना बोल दे के कि वाजिनाज के गेठा हमारा लगे एगो फेत बा सके 10 बजे रात लग जाए जमें वो लोगों पे पा ही रही ऐसा बोला कैसे
1: अच्छा जाते जाते जब एगो फेत रहेला तो कितने बजे मतलब समय होला चाहे
0: समय तो नहीं है से, नहीं। समय नहीं है तो भर सक जब एगो कंप्लेंट जान रहा बा तो भर सक 10 बजे इधर ही रात के
1: मतलब अच्छा रही एक मजा
0: तू अपन प्रोग्राम सब कौनसी नहीं करिया करा से मैं ला म्यूजिक नहीं डाला नहीं तो एगो कूल म्यूजिक डाला जो कोई के नहीं दे से करा हम कूल म्यूजिक कैसे बदला कैसे तू अपन घर में डाल
1: इतना ही लिमिट सीमित
0: जिसमें जिसमें वैमित सीमा पर जब निकल के जब सुनबा तो थोड़ा नहीं सुनाई ऐसे रही तो भर तीज अभी बजल लालवा में नहीं बोल रहा कि कितना बखत था खेल ला म्यूजिक सब वैनकाचे वैनका खिलाई मैं ओकर डरला टोवा चला के सुनाब रह गया कैसे अपन घर में डरला सीमा में निकलला जैसे देख ले तो वहाँ पर नहीं सुनाता तो सब ठीक बा अब ढेर दूर लोग सुनाता था नहीं छपा तो ये हम मांग करती कि हाँ आज वो ज़्यादा मांग करती कि पारों लोग के चल अपन लड़का लोग एजी के करेंगे कैसे कानों बास बा वो लोग अपन लड़का के कुछ नहीं बोलिए बड़का बड़का मार जहाँ बुक्स में तो हम तो जाएँ लेकिन चाहला हाई हॉप चीज ले जाए कि क्या करा रोन सा बड़का कानों ब्लास डाले रोन सा कुछ नहीं उम्र से डाले अब जो लड़का लोग अपन मोटरसाइकिल के मुजिफिए कराता रिसाप मो पाहों के चाहला लोग से बतियाए के ऐसा भी जिकाशन इसी से
1: तो आज की चर्चा इस प्रोग्राम का समय यहीं पे पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आप श्रोताओं दर्शकों को अवश्य लाभ हुआ होगा। तो आप सबों के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। साथ में कादेर को और उरुसा, साथ में हमारी जो प्रोड्यूसर शीतल लुबिन को धन्यवाद देते हैं। और आप सभी श्रोताओं और दर्शकों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रोग्राम तक अनुमति दीजिए। नमस्कार और आदाब।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए अपनी जगह बना गया। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 और अर्जेंटीना 2। अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी। फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। लियोनेल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया है जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा। पहला खिलाड़ी है काफू, जो ब्राज़ील के साथ खेला था। और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार रात 11 बजे आप देख पाएंगे। मॉरिशस टेलीकॉम द्वारा पाई के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में ऑल माइटी समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कल और आज लग रहा है। डिजिटल और राजनीति क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एक मंच पर वो साथ ला रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में सामने आ रही है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक कर्मचारी को कल गिरफ्तार किया गया। सीबी में लाइन्स टेक्नीशियन 33 साल के मोहम्मद जलालुद्दीन मोहबीर की गिरफ्तारी से पहले उनके साथ अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने वालिदिपखत के एक निवासी को एक फर्जी दस्तावेज दिखाकर ये दावा किया कि उन्हें सीबी की ओर से उसके बिजली मीटर की निरीक्षण करने भेजा गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार इसके बाद उन्होंने मीटर में कथित अनियमितता की शिकायत सीबी को न करने का आश्वासन देकर उस व्यक्ति से बड़ी रकम की मांग की, जो उसे मिली भी। एससीसी एक्ट के तहत इन आरोपों को भ्रष्टाचार के अपराध की श्रेणी में माना जा रहा है। विदेश में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान अमेरिकी बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खालिक एयर टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। ऋषि दयानंद रो थ्वाबुचिक यूनियन वेल में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री निशान सिंह चुबा, जो निशान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके बेटे गिरेश्वर सिंह चुबा के मकान ऋषि दयानंद रो थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। यूनिवर्सल स्ट्रीट फोर बाक ब्रांच रोड पुधोदो आमलेथ में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के जनाब जुनूब अहमद, जो जुनूब के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दोपहर 2 बजे उनकी बेटी शहनाज पुताहू के मकान यूनिवर्सल स्ट्रीट फोर बाक ब्रांच रोड पुधोदो आमलेट से उठाकर दफनाने के लिए पीतों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। कुजियालेन ओलिये में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के जनाब शेख हबीद नीमत, जो बायामिन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दोपहर ढाई बजे उनके बेटों के यहाँ से कुजियालेन ओलिये से उठाकर दफनाने के लिए सहमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 10:06 हुए हैं इस स्टूडियो की घड़ी में। आप सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भक्ति की धारा। भक्ति की धारा बहने वाली है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए श्रोताओं, हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश जी का नाम हम लेते हैं, क्योंकि वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और सफलता के भी देवता माने जाते हैं। तो चलिए शुरुआत हम करने जा रहे हैं उन्हीं का नाम लेकर।

श्रोताओं, जहाँ भगवान गणेश जी का आशीर्वाद होता है, वहाँ हर बाधा अवसर में बदल जाती है। विश्वास रखिए, शुभ सोच रखिए और हर दिन नई शुरुआत करते रहें। तो चलिए, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। 10:11 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। गुरुवार का दिन है, आज का दिन जो है हम समर्पित करते हैं भगवान साईं बाबा को, साथ में हम समर्पित करते हैं भगवान विष्णु जी को और साथ में है माँ पार्व माँ लक्ष्मी को भी हम आज का दिन पूछते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम कर चुके हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर, और इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा गीत। आप ये गीत जो है पसंद करने वाले हैं भगवान विष्णु जी पर आधारित, और आपको पता है कि भगवान विष्णु जो है वो पालनहार है, हम सब की जो है वो पालन करते हैं। तो चलिए, श्रद्धा भाव के साथ अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे।

प्रिय श्रोताओ, जब भी जीवन की राह कठिन लगे, एक बार प्रेम के हरि मुकुंद का नाम लीजिए। यह नाम मन को सुकून देता है, हृदय को श्रद्धा से भर देता है और विश्वास जगाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नए सुबह अवश्य आती है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, हरि मुकुंद का नाम हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रेम, भक्ति और विश्वास से बसती है। हरि मुकुंद का नाम अपने हृदय में बसाइए, प्रेम को अपना मार्ग बनाइए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। जब मन प्रभु से जुड़ जाता है, तब जीवन का हर पल एक सुंदर आशीर्वाद बन जाता है।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओ, ईश्वर का नाम जितना हृदय में उतरता है उतना ही जीवन सरल और आनंदमय बनता जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की अगली भेंट में हम ये बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान लता मंगेशकर के स्वर में हम सुन पाएंगे।

वैसे श्रोताओं, ज्योत केवल प्रकाश नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम, विश्वास और चेतना का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर की अच्छाई, करुणा और सकारात्मकता को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तब जीवन वास्तव में प्रकाशित हो उठता है।

श्रोताओ, अपने जीवन को ऐसा दीप बनाइए जो केवल स्वयं नहीं बल्कि आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करे, क्योंकि जब ज्योत से ज्योत जलती है तब उजाला केवल घरों में नहीं दिलों में भी फैलता है।

चलिए श्रोताओ, 10:40 हो चुके हैं इस स्टूडियो की घड़ी में और बहुत ही प्यार के साथ आप हमारा साथ निभा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। वैसे हम चंद भक्ति गीत चला रहे हैं और ये गीत जो है हम भगवान विष्णु, भगवान हरि विष्णु पर आधारित ये प्यारे प्यारे भक्ति गान हम चला रहे हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं, तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये अगला भक्ति गान इसे आप ज़रूर पसंद करने वाले हैं। हम आपसे यही कहेंगे, अपने जीवन को ऐसा दीप बनाइए जो केवल स्वयं नहीं बल्कि आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करे, क्योंकि जब ज्योत से ज्योत जलती है तब उजाला केवल घरों में नहीं दिलों में भी फैलता है। तो चलिए आज अपने मन में प्रेम और विश्वास की एक ज्योत जलाए। हो सकता है हमारी एक मधुर शब्द या एक नेक कार्य किसी और के जीवन में उम्मीद का दीप बन जाए। यही तो है ज्योत से ज्योत जलाने की सुंदर भावना।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: प्रिय श्रोताओ, दुनिया की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मन की शांति प्रभु के स्मरण से ही मिलती है। तो बहुत ही प्यार के साथ आप हमारा साथ निभा रहे हैं, तो चलिए

अगले भक्ति गान की ओर हम बढ़ेंगे। भजले का संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन की भागदौड़ में कुछ पल ईश्वर के स्मरण के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमें थोड़ा वक्त निकालकर उसका स्मरण करना भी बहुत ही अनिवार्य है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में भी छलकती है।

श्रोताओ, भक्ति का मार्ग प्रेम, सेवा और विनम्रता से होकर गुजरता है। प्रभु का स्मरण हर दिन को शुभ और हर पल को अर्थपूर्ण बना देता है। तो चलिए, कार्यक्रम का समापन एक आरती के साथ करेंगे। वैसे सुबह 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे, समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा की प्रस्तुति में। हमारी तरफ से आप सभी को शुभ दिन।

0: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 और अर्जेंटीना 2। अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी। फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार रात 11 बजे, देखना न भूलें। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई। वित्तीय अपराध की रोकथाम संबंधी अपनी रिपोर्ट में एफसीसी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गंभीर खामियों और कमजोरियों का खुलासा किया। पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिज ने कहा कि उन्हें इस रिपोर्ट और अध्ययन की जानकारी मिली है। मिसले मौदागे मामले में एक नया मोड़। बुधवार से लंदन में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT की अपील अदालत मार्च में दिए गए फैसले के खिलाफ बरतानी अधिकारियों की अपील पर सुनवाई कर रही है। मार्च में दिए गए फैसले में मिसले मौदागे और 3 अन्य शागसवासियों के खिलाफ जारी निष्कासन आदेशों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि अपील का फैसला आने तक उस आदेश पर फिलहाल रोक लगी हुई है। वहीं अदालत द्वारा दी गई अंतरिम कानूनी सुरक्षा के कारण उन्हें अभी निष्कासित भी नहीं किया जा सकता। अब अदालत को तय करना है कि मार्च में लिया गया फैसला बरकरार रखा जाए या उसे रद्द किया जाए। विदेश में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के 5वें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान अमरीकी बलों ने होमूस जलमार्ग में ईरान के बंदरगाह पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय किया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। जंबो रोड शामुनी में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के कुमारी आना जनका जागानायक्लू कुमारी आना जागानायक्लू जो आना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके मकान जंबो रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांववा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। ऋषि दयानंद रो थ्वाबुचिक यूनियन वेल में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री निशान सिंह चुबा जो निशान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 3:30 बजे उनके बेटे गिरेश्वर सिंह चुबा के मकान ऋषि दयानंद रोड थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 3:30 PM। फोर बाग ब्रांच रोड पुथोदो आमलेट में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री जुनूब अहमद जो जुनूब के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दोपहर 2 बजे उनकी बेटी शेनाज पुतागो के मकान यूनिवर्सल स्ट्रीट फोर बाग ब्रांच रोड पुथोदो आमलेट से उठाकर दफनाने के लिए पीतों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2:00 PM। कुजियालेन ओलिये में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के जनाब शेख हबीद नीमत जो बाय आमीन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2:15 बजे उनके बेटों के मकान कुजियालेन ओलिये से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए बेलगोज की मस्जिद और दफनाने के लिए सैमौतें का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2:15 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: शम्मे फरोजा

आऊज़ु बिल्लाही मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

अल्लाह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, अल्लाह कलम तेरे हैं। मौजूद सामईन, उम्मीद है आप बफजल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मोशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक हम्द मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब का बयान, नातु सलाम और आपके पैगामात। और साथ साथ हम आपको इस्लामी साल का दूसरा महीना जो कि आज से शुरू हो रहा है, जी हाँ माह सफ़र, उसकी भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए ताख़ीर ना करते हुए आगाज़ करते हैं सूरह अर्रहमान की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदक़ल्लाहु अज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह रहमान की तिलावत। सूरह रहमान हमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों की याद दिलाती है और बार बार ये सवाल करती है, फ़बिअय्या आलाए रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, यानी पस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला हमें अपनी इन नेमतों का शुक्रगुज़ार बंदा बनाए, कुरान मजीद को हमारी ज़िंदगी का नूर बनाए और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।

0: मौजूद सामईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं। जुमेरात का दिन है, जुलाई की 16 तारीख है और आज इस्लामी साल का दूसरा महीना, जी हाँ, माह सफ़र शुरू हो चुका है और आज माह सफ़र की पहली तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005, जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। उर्स शरीफ महबूब यज़दानी, हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर अब आप समात फरमाएंगे। ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाइलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: نحمده نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد

अगर इल्मी सतह पर देखें तो दुनिया के चंद औलियाए कामलीन में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम नुमाया है। क्या आप जिस मुल्क में पहुंचते उस मुल्क की जबान को फौरन सीख लेते और फिर उन्हीं जबान में तौहीद व रिसालत, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाते, वादहुला शरीक की तरफ दावत देते, रिसालत दुआ सल्लम की प्यारी अहादीसों को पहले आप बयान करते उनकी ज़बान में और फिर उन्हीं की ज़बान में किताब लिख कर उनके दरमियान छोड़ देते। ये कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर कोई अपने मुल्क के मॉरिशस की मिसाल रखे, कोई नया आदमी आ जाए, एक महीना दो महीना भी रहे, उससे बोलो कि किरोल सही बोलेगा, तो किरोल सही नहीं बोल पाएगा, लिखने की तो बात दरकनार। ये अल्लाह तबारक व ताला की अता है। नबी सल्लम ने जो बशारत दी नाम अशरफ रखना, तो नबी करीम सल्लम की रहमत कामिला का सदका, क्या आप जिस मुल्क में पहुँचते वहाँ की ज़बान में रुशद व हिदायत का दर्स देते हो, किताब लिख कर छोड़ देते हो। और आगे अगर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सामानदुल्लाह तआला की ज़िंदगी को हम अगर बग़ौर मुताला करें, तो चंद औलियाए कामलीन में जिनके मुरीदीन ज़मीन पर हैं, चंद ऐसे हैं उन्हीं में से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं जिनके मुरीदीन सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर के अंदर भी हैं। और एक शहर मदीनतुल अशरफ है और वहाँ पर आपके मुरीदीन हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हम सफ़र कर रहे थे, समंदर के रास्ते से कहीं जा रहे थे, ख़्याल किया कि पीरों के मुरीद तो ज़मीन पर होते हैं, क्या किसी के मुरीद समंदर के अंदर भी होते हैं। थोड़ी देर में देखा कि समंदर से एक शख्स नमूदार होता है, ज़ाहिर हुआ और आके मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी से हम कलाम यानी गुफ्तगू करने लगा, बात करने लगा। लेकिन उनकी ज़बान क्या थी? समंदर में जो शिप चल रही थी, जो आपके साथ रफ़का बैठे हुए थे, हज़रत निज़ामुद्दीन यमनी फरमाते हैं हम लोग उनकी ज़बान नहीं समझ पाए, लेकिन ताज्जुब इस बात का भी था हमें ज़्यादा कि जो ज़बान बोल रहा था वो उसी ज़बान में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जवाब भी दे रहे थे। अल्लाह अकबर। ये भी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की अजीम करामतों में से करामत है कि अल्लाह ने हर मुल्क की ज़बान अता फरमाई, समंदर के जानवर और समंदर के रहने वाले की भी ज़बान और आपके मुरीदीन समंदर के अंदर भी हैं। अज़ान मोहतरम, हुजूर मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी सामरदुल्लाह तआला की इल्मी सतह ही की बात कर लें तो बहुत से खानवादे पिराने उज़ाम जिन्होंने दीन की तबलीग की, लेकिन उनके जाने के बाद फिर उनके बच्चे या उनके ख़ानदान वाले वो इल्म नहीं हासिल कर सके जो इल्म उनके आबा अजदाद के पास था, जिसके ज़रिए इस्लाम की तबलीग फरमाई। आज बहुत से पिराने उज़ाम हैं, फ़ारसी के एक मकूला, पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, तो इस नतीजे पे लोग सज्जादा नशीन बन जाते हैं, लेकिन कोई सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोई नमाज में खड़े होने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, नमाज नहीं पढ़ा पाते हैं। बीमारी एक अलग वजह है, लेकिन कुरान सही नहीं पढ़ पाते हैं। किसी के पास इल्म दीन नहीं है, बस पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, मैं भी बादशाह हो गया, लेकिन उनके इल्म पर तवज्जो नहीं। हुजूर मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी सामानदुल्लाह तआला ख़ानदान की ये करामत आज भी है और मुझे उम्मीद है अल्लाह उसके रसूल के ज़ात से क़यामत तक रहेगी। उनके ख़ानदान का सज्जादा नशीन वही होता है जो इल्म ज़ाहिर और बातिन का हामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार मखदूम अशरफ सिमना के ख़ानदान के
इल्मी जाहो जमाल को आप देखें, हिंदुस्तान की गालिबन कोई

0: ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें कि उनके ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द लेक्चरार की हैसियत से ना बैठा हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, चाहे बेच यूनिवर्सिटी बनारस की हो। और साथ ही साथ इल्मे दीन के मैदान में आप देखिए अल्लाह अकबर एक से ख़तीब हैं जैसे गाजी मिल्लत हैं और बहुत से खुतबा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे मुफस्सिर और मुहक्किक हैं। शेखुल इस्लाम मदनी साहब को देखिए या इससे कबल देखो या आज मौजूदा दौर में अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्स के आखिरी दिनों में हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह मोहम्मद सलमान अशरफ अशफुल जिलानी सज्जादा नशीन ख़ान का है अहमदिया जायज़ शरीफ में मौजूद हैं, उनके इल्म को देखो, उनके बयानात को सुने, नूरानी में साहब क़िबला के बयानात, और भी ख़ानदान के बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क में आते रहते हैं, मौलाना सैयद कलीम अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुम आलिया, मौलाना सैयद सलमान अशरफ साहब और तमाम आते हैं। तो बहरहाल ये खसूसियत है इस ख़ानदान की कि इनके यहाँ सज्जादा नशीन वही होगा जो साहिब इल्म ज़ाहिर व बातिन का हामिल हो। दीगर ख़ानवादों में इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह सबको इल्म दीन और दुनिया अता फरमाए। हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद शब जहांगीर समनानी की बेपनाह फ़ैज़ो बरकात, उनकी दरगाह शरीफ आज भी लोगों के लिए बहुत बाफैज़ है। नीर शरीफ का पानी पीजिए, वो बाबरकत नीर है जिसे औलियाए कामलीन कंदरों ने ज़र्बे ला इलाहा इल्लल्लाह से उस तालाब को तैयार किया, और उस नीर में पानी आबे जमजम का भी है, उससे लोगों को शिफा मिलती है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला उर्स मखदूमी का फैज़ान मुल्क मॉरिशस आलम इस्लाम में अता फरमा, और तमाम उनके मखदूम पाक की आल औलाद सब को अल्लाह दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमा और तमाम तर बुराइयों से हिफाजत फरमाना अल्लाह, हासिदीन से हिफाजत फरमा, ज़ालिमीन से हिफाजत फरमा, और इस मुल्क में अमन व सुकून। और आखिरी बात चलते चलते कहूँगा कि जो लोग फातिहा नहीं कर सके, अभी भी सवेरा है, उर्स मखदूम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के नाम फातिहा करके अपने घर को खैर व बरकत से मुनव्वर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।
1: मौजूद सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे उर्स शरीफ के मौके पर ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाइलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए एक ऐलान। मंगल 21 जुलाई, जी हाँ, मंगल 21 जुलाई सुबह 10 बजे अब्दुल रज़ाक हॉल फिनिक्स में उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में माह सफ़र के मौके पर महफिल सफ़र का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसी के साथ वक्त कम है, आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। नोत क़दाम से नासिर और नाजिमा तमाम सुनने वालों को और ख़ास तौर पर उर्दू MBC उर्दू टीम को सलाम पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें न्यू गोफ की फातिमा भी आज सफ़र की मुबारकबाद दे रही हैं, और बंधु और कोमाली फैमिली जो कि त्रियोली की रहने वाली हैं, वो तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। और फरानाज जुमन क्यूपिप से हमारा प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद करती हैं, वो सबको माह सफ़र की मुबारकबाद दे रही हैं और तमाम मरीज़ों के लिए दुआए शिफा की गुजारिश भी कर रही हैं। इसके अलावा तैगूस से अमीरा ने एक कलाम की फरमाइश की है अपनी कज़न्स बिल्किस, फौजाना, शकीगा, नशीन, और दुआ शिफा की गुजारिश की है अपने भांजे अनस के लिए और अपनी चाची मरियम के लिए। इसके अलावा खाला नाजमून भी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं, और लागिकुओं से रशीदा आजम, अपनी बहन रेहाना, उजिया फैमिली, नौबत फैमिली के अफराद जो कि उम्रे से वापस आ चुके हैं, वो बेहद शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने उनकी मदद फरमाई और वो साथ

खैरियत के अपने मुल्क वापस आए। इसके अलावा फरीदा जुमन, जी हाँ फरीदा जुमन जो कि इस वक्त आईसीयू में हैं, उनके लिए उनकी बेटी फरीदा जुमन दुआए शिफा की गुजारिश कर रही है। अल्लाह पाक फरीदा जुमन की सेहते कामला अता फरमा, आमीन। लावेनिया से हाफिज़ बाबा साहेब भी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं।

मौजूद सामईन, इसके साथ हमें कुछ और पैगाम भी मौसूल हुए हैं। ग्लेन पॉक्स से ज़हीना ईसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं, मरहूम वालिद रऊफ़ तेगाली और उनकी बेवा भी उनके लिए, अपने शोहर के लिए ईसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। इसके अलावा बेवा रोज़ीदा, बेटियां और नवास से नवासियां ज़रीन, शहीन, हुमैरा, हमना दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके नाना को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा फौजिया, मरियम, आलिया, राबिका, जाबीन, फरजाना, अपने वालिद कसाम और वालदा जुबैदा और भाई इमरान, गंगा, खूब और तमाम मरहूमिन के लिए जिया नूर जहाँ, ज़ुबैर, लुकमान दुआए मगफिरत की गुजारिश की जा रही है इन तमाम मरहूमिन के लिए।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: स्वर तरंग,
3: स्वर तरंग।
4: संगीत प्रेमी श्रोतनो नमस्कार, सुस्वागत स्वर तरंग कार्यक्रम में आप आपले स्वागत है। दरअसल हम आशा करते कि आप ठीक आहत मजे आहत एंड चुनिंग करीत आहत ऑन MBC रेडियो। एक क्षण 33 मिनट संगीतमय कार्यक्रम सुरू होना है तुम्हार सगळ्यांच्या मनोरंजना 2 वाजतापर्यंत। रसिको साध्या कार्यक्रमाचा शेवटपर्यंत व शुभारंभ करूया आजचा आपला स्वर तरंग कार्यक्रम बाप्पाचा जय जयकार करून।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आपकी पसंद। गुरुवार 16 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए 2:45 हो रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। चलिए, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हम यहाँ आ गए हैं, आप सबके साथ जुड़ चुके हैं और अभी इससे लेकर जो है 6 तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है, यानी कि आपकी पसंद प्रोग्राम 4 तक चलेगा। तो साथ दीजिए हमारा। ऐसे तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था कि आपके मैसेजेस यहाँ पर ऑलरेडी कितने सारे हमें मिल चुके हैं। 5251705 पर, 5251700005 पर, और साथ ही आपके फ़ोन कॉल्स भी यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं 4028085 पर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। आज गुरुवार है और आज गर्मी काफ़ी है ना। आज धूप इस तरह से खिली हुई है कि कोई कह नहीं पाएगा कि आज ठंड है। तो चलिए, मौसम चाहे जैसा भी हो, यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में मौसम जो है हमेशा सुहाना होता है, हमेशा सुरीला होता है। तो चलिए, देर बिल्कुल नहीं करेंगे और इस खूबसूरत गाने के साथ आपकी इस पसंद, आपकी पसंद इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे। और भूलिएगा नहीं अपनी फरमाइशें, अपने डेडिकेशंस हम तक पहुँचाने के लिए।

0: चलिए, दिल की बात गानों से बेहतर क्या हो सकता है कहने के लिए, है ना। तो चलिए, आप भी अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, किसी को सुनाना चाहते हैं, तो आपकी पसंद इस प्रोग्राम में जुड़ जाइए हमारे साथ।
1: आपकी पसंद,
0: जी हाँ, आपकी पसंद इस प्रोग्राम में बढ़ेंगे हम इस अगले तराने की ओर। लैला मजनू फिल्म का ये जो गाना है, ये जाता है बोबासा के वसंती जी, आपके नाम, आपकी ओर से, आपके पूरे परिवार के लिए जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, और साथ ही यही गाना हमारे सभी सुनने वालों के लिए। लैला मजनू फिल्म का ये तराना है लता जी और साथियों की आवाज़ों में।

तो चलिए लैला मजनू के इस गाने के बाद अब बारी है उम्मीद फिल्म के इस तराने की, और इसके साथ हम नाम जोड़ेंगे सेलू का, जो एक्वायो से हमारे साथ जुड़ी है। गाना जाता है सभी दोस्तों के लिए, सभी पेंताया परिवार के नाम। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर। समाचारों के उस पार आपके पसंद प्रोग्राम यह जारी रहेगा, तो साथ देते रहिए हमारा।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन उसे लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और दबाव में आए पर्यटन क्षेत्र ने आर्थिक स्थिति पर असर डाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस सप्ताह मॉरिशस के साथ अपनी वार्षिक समीक्षा पूरी की। इस दौरान IMF ने सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर को लेकर चेतावनी दी है, जो जून 2025 के अंत तक सफल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 86% पहुंच गया था। साथ ही सरकार के वित्त पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई गई है। IMF ने पेंशन व्यवस्था से जुड़े सुधारों सहित सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारों की सराहना की है। हालांकि संस्था ने टिकाऊ आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बजटीय संतुलन सुधारने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। लैंगिक समानता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जूनियर अचीवमेंट मास्कारेंस के बीच आज गुड़गांव में गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री तथा संबंधित मंत्री आर्यन नवामारी ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगी। देश में पेट्रोल और डीजल का मौजूदा भंडार अगले 18 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इनकी नई खेप 20 जुलाई को पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जेट A1 ईंधन का भंडार 20 दिनों के लिए उपलब्ध है। LPG का मौजूदा स्टॉक 13 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में है और इसकी नई खेप 17 जुलाई यानी कल पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा हैवी फ्यूल ऑयल का भंडार 45 दिनों के लिए उपलब्ध है, जबकि इसकी अगली खेप जुलाई के अंत तक देश पहुंचने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के कई शहरों में राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा लोकप्रिय रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को अचानक पद से हटाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। राजधानी कीव में बड़ी संख्या में विशेषकर युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने फेदोरोव को मत हटाओ और जीत के प्रयासों को कमजोर करना बंद करो जैसे नारे लिखी तख्तियां उठाई और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब तक अपने इस फैसले का कारण सार्वजनिक नहीं किया है। इस निर्णय से राजनीतिक विश्लेषकों, सैन्य अधिकारियों और नागरिक समाज के एक वर्ग में असंतोष देखा जा रहा है। 35 वर्षीय मिखाइलो फेदोरोव को इसी

0: वर्ष जनवरी में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। उन्हें मंत्रालय में सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और युद्ध मोर्चे पर प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए डेटा आधारित रणनीतियों के इस्तेमाल का श्रेय दिया जाता है। संसद में आज गृह मंत्री आइहो क्लिमेंको को नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर मतदान होना है। वहीं फेदेरोव की बर्खास्तगी को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ इसे सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सारेस्की के साथ मतभेदों से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि सैन्य लामबंदी में सुधार की धीमी गति इसके पीछे की वजह हो सकती है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
3: आपकी पसंद
4: चलिए समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं आपकी पसंदीदा प्रोग्राम में, जहां कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। और आपको तो हमारा नंबर पता ही है, 4028085 आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, साथ ही आपके मैसेजेस 5251705 पर। और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, आपके दीवाने फिल्म का ये जो तराना है, मेरे दिल में जो होता है। चलिए गाना जो है जाता है विश्वानी जी आपके नाम वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और साथ ही यही गीत जाता है आपकी बहन इंदिरा के नाम, शारदा के नाम, सहेलिया है नीला, प्रतिभा, शोभा है, गीता गजादर है, सभी दुमन परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़े रहिएगा बेशक। और चलिए यहाँ पर अगला जो तराना है ये हम शैला जी आपके लिए भी करते हैं, बड़े प्यार से इस समय आप हमारा साथ दे रही है, कहा बस किसी भी गाने में हमारा नाम जोड़ दिया जाए। तो चलिए इस तराने को आपके नाम भी करते हैं।

चलिए, आपके भी दिल में कोई गाना है, किसी के नाम करना चाहते हैं, या बस खुद अपने नाम कोई गाना आप चाहते हैं डेडिकेट करें, तो बेशक साथ दीजिए हमारा आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। और अब बारी है इस अगले तराने की। अगला गाना जो है यहाँ पर जाता है खास कर ज्योति जी, आपके नाम इस समय यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही हैं। आपकी ओर से गाना जाता है प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अभिषा के नाम, साथ में दिव्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये गाना आपके लिए भी दिव्या खासकर। और राजा हिंदुस्तानी का ये जो तराना भी चलने वाला है, इंदिरा लौटन जी, आपके नाम हम करते हैं। आपकी ओर से गाना जाता है पेपे, दीक्षा, कृष्णा, गोपी, गोपी सिंह परिवार के नाम जो मादालबेर से हमारा साथ दे रही है, और साथ ही गोपी सिंह परिवार जो इस समय लंदन से हमारे साथ

0: चलिए, कभी कभार हमारे जो अपने होते हैं वही हमारी ज़िंदगी की बहार होती है। फिर चाहे हमारे रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त हो, और ये जीवन में अपनों की जो बहार है वो सदा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं।
1: आपकी पसंद
0: बड़ा ही खूबसूरत सा तराना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से अभी आप सुन

रहे थे और अब बारी है इस अगले गाने की। अगला जो तराना है कटरबोन से केश हमारे साथ जुड़ी हुई है। बातों बातों में फिल्म का ये जो गीत है आपकी ओर से जाता है आपके पति आनंद के नाम, साथ में बेटियां हैं नेहा नितिशा जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यही गाना जो है हम करेंगे इस समय ज्योति जी आपके नाम जो शाते बनारस से हमारा साथ दे रही है। अगला गाना आपकी ओर से ज्योति जी जाता है आशी के लिए, साथ में रेखा है सुरेखा है सभी मधव परिवार के नाम और हमारे लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, चलिए गाना आप सभी के लिए चल पड़ा।

चलिए, उदासी की हर वजह को हम दूर करते हैं और यहाँ पर आपके पसंदीदा गानों को चलाकर आपको खुश करने की एक छोटी सी कोशिश हमारी। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो तराना है, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है, मोहब्बतों का सफ़र इसका टाइटल ट्रैक है। पंकज उदास, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ों में।

जाता है, यहाँ पर जाता है किंग सुमन, आपके नाम आपने लिखा है कि प्लीज़ प्ले नेक्स्ट सॉन्ग फॉर मी। तो चलिए किंग सुमन, ये अगला गाना आपके लिए हम करते हैं। और इस समय ग्राउंड अप से सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुनीता जी, यही तराना आपके लिए। साथ में कोंगोमा से विमला है, गुडलैंड से वीना है, अमृता है, सभी बड़े प्यार से इस समय हमें सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, मोहब्बतों का सफर है हमारे साथ चलो। कहते हैं ना कि एक दूसरे का साथ देने से जिंदगी का सफर जो है आसानी से कट जाता है, हर पल खुशनुमा हो जाता है। और आपका प्यार भरा साथ तो हमेशा हमें मिलता ही रहता है, इसके लिए धन्यवाद। और चलिए अगला गाना जो है यहाँ पर जाता है खासकर आशना और रोहिश के नाम, जिनकी शादी होने वाली है शायद, क्योंकि आपने जो मैसेज लिखा है हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि शादी हो चुकी है होने वाली है। तो चलिए अगला कहा कि एक वेडिंग गाना हो जाए आशना और रोहिश के नाम, और शुभकामनाएं मामा सुरेखा की ओर से, पापा अशोक की ओर से, भाई अश्विन की ओर से, सिस्टर है वेदना, अमृता, सती, सभी नमः परिवार की ओर से और सभी दुखित राम परिवारों की ओर से। आशना और रोहिश, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तो शादियों का सीज़न है, हर सप्ताहांत न जाने कितने लोग जो है शादी के इस बंधन में बंध रहे हैं। तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से ढेर सारे बेस्ट विशेज, शुभकामनाएं। जीवन का ये जो नया सफ़र है आपके जीवन में नई मिठास लेकर आए, और खुशियां ही खुशियां आपके दामन में हमेशा हो।

0: आपकी पसंद।
1: और चलिए देखते ही देखते 3:48 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। और ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो तराना है तकदीर फिल्म का गीत होगा रफ़ी साहब की आवाज़ में, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। तो चलिए ये जो तकदीर फिल्म का गीत है जाता है यहाँ पर सभी बंधु परिवार के नाम जो इस समय ट्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। और यही गाना हम करते हैं रिहाना जी आपके लिए, आप भी हमेशा हमारा साथ देती हैं, हमेशा गानों की फरमाइश करती हैं, तो आपको भी हम नहीं भूले हैं। और फिर हमारे साथ जो है आफेज जी लावेनिया से हमेशा हमारा साथ देती हैं, तो आफेज जी ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में,

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन कहते हैं कि कभी कभार हमें जीवन में वही मिलता है जो हमारी तकदीर, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से इस बात को झुठलाते हैं और अपने मेहनत और अपने जो है दृढ़ संकल्प से उस चीज़ को भी हासिल कर लेते हैं जो कभी कभार उनकी किस्मत में नहीं होता है। तो बस जो चाहते हैं उसके लिए सपना ज़रूर देखें, और सपने अगर पूरे करना चाहते हैं तो सपनों को पूरी करने के लिए कोशिश भी हमारी होनी चाहिए, है ना। और चलिए आपको भी वो सब कुछ मिले अपने जीवन में जिसकी इच्छा आपको है। अभी के लिए बढ़ते हैं कसूर फिल्म के इस अगले गीत की ओर, उदित नारायण और अलका जी की आवाज़ों में। बबासन से हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गानों को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गाना हो जाए उनके एक खास दोस्त के लिए। और चलिए इस समय माधुरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कह रही है कि सुमी जी हम भी आपके साथ साथ ही हैं। तो माधुरी जी ये गाना आपके लिए भी खासकर।

0: आपकी पसंद।
1: और चले पसंदीदा गीतों के इस प्रोग्राम में, गुलाम फिल्म का ये गाना चल पड़ा है, जाता है माया जी आपके नाम, मोतियाबिंद ब्लॉग से हमारा साथ दे रही है। और कविता जी, ये गाना आपकी ओर से जाता है आपके सभी सहेलियों के लिए। माला जरी जी भी हमेशा हमारे प्रोग्रामों में भाग लेती है, तो माला

0: चलिए इसी के साथ यहाँ पर जन्मदिन की शुभकामनाओं की ओर हम अब बढ़ेंगे। यहाँ पर जन्मदिन की शुभकामनाएं सहेली अनीता के नाम, सभी दोस्तों की तरफ से उनको बधाई अनीता जी, और यहाँ पर जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं आई है यहाँ पर खासकर मौदालबेयर से इंदिरा जी की ओर से और पूरे परिवार की ओर से, और यहाँ पर बेटा विनय भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको भी शुभकामनाएं
1: आपकी पसंद।
0: बेटा विनय आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मम्मा मम्मा केशवंती।

और पापा ज्ञान की ओर से, आपकी पत्नी हेमा की ओर से बच्चे हैं नेहा, येशु, साथ में यहाँ पर आपके बहनों की ओर से, सभी बीमत परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपकी पसंद इस प्रोग्राम के अंत तक हम आ गए हैं। जाते जाते ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम हम करते हैं और इसी के साथ जो है आपकी पसंद ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जो है वो जारी रहने वाली है। 4 बजे से यानी कि इस गाने के बाद शुरुआत होगी भक्ति सागर इस कार्यक्रम की, तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिश। रेडियो मॉरिश
1: भक्ति सागर।
2: गुरुवार 16 जुलाई गाड़ी मिला लीजिए, सपैर के 4 बज चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर हमारे श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है भक्ति गीतों के कार्यक्रम भक्ति सागर की। भक्ति सागर भक्ति गीतों का ये जो कार्यक्रम है चलेगा शाम के 5 बजे तक। एक बार फिर हम आपकी सेवा में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं और आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए आप बहुत बहुत आभार। भक्ति गीतों के इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बता दें कि आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी से। तो चलिए भगवान गणेश के साथ साथ भगवान साई का नाम लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं। गुरुवार का दिन है, साई जी की पूजा अर्चना होती है। तो आज के हमारे इस प्रथम भक्ति गीत के साथ भगवान गणेश के साथ साथ साई जी की वंदना करते हुए, भगवान साई की वंदना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ

भगवान गणेश और भगवान साईं की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। कहते हैं कि जीवन में अपने आप से जुड़ना बहुत आवश्यक होता है, अपने अंतर्मन से जुड़ना बहुत आवश्यक होता है। कभी कभार जो हजारों प्रश्नों के उत्तर हम बाहर खोजते हैं, कहते हैं वो हमारे भीतर ही होते हैं, बस हमें अपने भीतर जो है देखने की आवश्यकता होती है। और एक ही चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने भीतर झांक सकते हैं, वो है ध्यान से, ईश्वर के स्मरण से, ईश्वर की प्रार्थना से। कभी कभार हम अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन समय निकाल कर यदि हम थोड़ा सा ध्यान करें, प्रार्थना करें, तो ये सभी चीज़ें हमें ईश्वर से तो जोड़ती ही है, ये हमें स्वयं से जोड़ती है। और जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो जीवन में बहुत कुछ जो है संभव होने लगता है।

0: अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में औरों के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। एक समर्पण की भावना सबके प्रति होनी चाहिए, एक सम्मान की भावना कहें, एक दूसरे के लिए सहायता करने की भावना, एक दूसरे के लिए हृदय में करुणा और प्रेम की भावना, यही तो मानवीय मूल्य है। कभी कभार समय के चलते हम इन्हें भूलने लगते हैं। चलिए अभी के लिए देखते देखते सवा चार यहाँ पर बच चुके हैं। भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं और अब हम बढ़ेंगे पीयूष धारा इस कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी से। तो आइए उनको सुनते हैं।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर के साथ।
2: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, ब्रह्मर्षि के शास्त्र सम्मत और वेदानुकूल विचारों को सुनकर श्रीराम ताड़का का वध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। राक्षसी को मारकर वे गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा और प्रजा रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। ताड़का को मारने के लिए श्रीराम धनुष उठाते हैं और उसे ललकारते हैं। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि तम शब्दम भी निध्याय राक्षसी क्रोध मूर्छिता, कि श्रीराम की ललकार सुनकर ताड़का बहुत ही क्रोधित होती हैं और तेजी से दौड़ते हुए वह श्रीराम की ओर आती हैं। उस लंबी चौड़ी क्रोधित भयंकर और विकराल मुख वाली यक्षिणी को देखकर श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण

से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो ताड़का का शरीर कितना भयंकर है। बलहीन लोग इसे देखकर कांपने लगेंगे। यह इतनी भयानक है कि अगर मैं इसे दंड देकर छोड़ दूं तो ये पलटकर आक्रमण अवश्य करेगी, हाहाकार मचाएगी, गौ ब्राह्मण और प्रजा का शोषण करेगी, यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करेगी। इसीलिए इस राक्षसी को जीवित छोड़ना ठीक नहीं होगा। तभी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि हे राम, अधर्म करने वाली राक्षसी पर दया दिखाना भी अधर्म है। क्या तुम अधर्म का साथ देना चाहते हो? अगर नहीं तो इस राक्षसी को मारने में तुम देर मत करो। इस राक्षसी पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रोताओं, महाकवि तुलसीदास जी दया को धर्म का मूल बताते हैं और कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। उच्च कोटि के कवि हम मनुष्यों से कहते हैं कि हे मनुष्यों, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक तुम दया करना नहीं छोड़ो, क्योंकि दया ही धर्म को धारण करती है, दया ही धर्म का मूल है। सच ही तो है श्रोताओ, धर्म का मर्म ही दया है, दया ही धर्म के दीपक को सदैव प्रज्वलित रखती है। दया निःस्वार्थ होती है, यह संसार दया पर ही टिका हुआ है। दया भाव से प्रजा का उपकार होता है, प्रजा की रक्षा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम सही कहते हैं कि दया धर्म के मूल में रहकर धर्म को धारण करती है, दया से न्याय और धर्म की रक्षा होती है। इसीलिए जब तक हम जीवित रहें तब तक हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए। महान नीति शास्त्री चाणक्य जी महाराज बड़े ही सुंदर शब्दों में दया भाव की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्व जंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किं जटा भस्मलेपनेह। अर्थात जिसका हृदय प्राणी मात्र के दुख को देखकर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष क्यों कर चाहिए भला। जिसके हृदय में दया का वास हो उसे जटा धारण करने की या शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। प्राणी मात्र पर दया करने वाला व्यक्ति कभी पाप कर्म कर ही नहीं सकता है। दया भाव सभी धर्मों से ऊंचा होता है। दया सात्विक भाव होती है। यह सात्विक भाव हमें परोपकार करने के लिए प्रेरित करता है। परंतु श्रोताओं, क्या हमें आंखें मूंद कर हर किसी पर दया करनी चाहिए? शास्त्र कहता है कि दान देना पुण्य का काम है, परंतु दान तभी पुण्य होता है जब वह उपयुक्त पात्र को दिया जाए। ठीक ऐसे ही दया करना धर्म है, पुण्य है, परंतु कुपात्र पर भूल कर भी दया नहीं करनी चाहिए। निर्बलों को सताने वाली राक्षसी पर दया करना पाप है, इसीलिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बार बार श्री राम को राक्षसी को दंडित करने का आदेश देते हैं। श्रोताओ, दंड के विषय में स्मृतिकार मनुजी महाराज कहते हैं, तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजं ब्रह्म तेजोमयं दंडं सृजत् पूर्वमीश्वरः। मनुजी महाराज प्रश्न उठाते हैं कि

किसने दंड को जन्म दिया है? और स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं कि दंड का जनक, दंड को उत्पन्न करने वाले स्वयं ईश्वर हैं। ईश्वर ने ही दंड देने की व्यवस्था का विधान किया है। परमात्मा अपराध नाशक हैं, स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। इसी कारण सभी प्राणियों की रक्षा के लिए उन्होंने दंड को उत्पन्न किया है। मनुजी महाराज कहते हैं कि देश, समय, शक्ति और विद्या, यानी कि अपराध के अनुसार उचित दंड देना क्षत्रिय का धर्म होता है। दंड को जागृत रहना पड़ता है, तभी अपराध करने वाला भयभीत होता है। दंड प्रजा का रक्षक होता है, दंड पहरा देता है, तभी प्रजा निश्चिंत होकर सुख की नींद सोती है। नियम और शासन को कायम रखने के लिए परमात्मा ने दंड का विधान किया है। जो प्रजा को सताए, उसकी शांति भंग करे, ऐसे अपराधी को दंड देना क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। इसीलिए दया के निधान श्री राम राक्षसी ताड़का पर दया नहीं करते हैं। अपने धर्म का पालन करते हुए श्री राम राक्षसी ताड़का को मारकर धरती पर गिरा देते हैं। यह देख महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस रात श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ताड़का वन ही में विश्राम करते हैं। अगले दिन महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में चलने के लिए जब वे तैयार होते हैं, तब महर्षि विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि हे राम, सिद्धाश्रम में पहुंचकर तुम्हें मेरे यज्ञ की सिद्धि के लिए कपटी राक्षसों से भिड़ना पड़ेगा। सुबाहु और मारीच छल कपट के स्वामी हैं और बलशाली भी हैं। अपनी माता ताड़का के वध का प्रतिशोध लेने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हे श्री राम, तुम्हें दिव्य अस्त्रों के संचालन में पारंगत होना पड़ेगा। और श्रोताओं, महर्षि विश्वामित्र श्री राम को धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वज्र अस्त्र, महादेव अस्त्र, धर्मपाश अस्त्र, कालपाश अस्त्र, नारायण अस्त्र आदि विभिन्न दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। वे श्री राम और लक्ष्मण को ये अस्त्र चलाना भी सिखाते हैं। दिव्य अस्त्रों का उचित प्रयोग सीख लेने के बाद वे विश्वामित्र जी के आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। श्रोता भाई बहनों, सिद्धाश्रम पहुंचकर क्या श्री राम यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ हो पाएंगे? यह हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। तब तक के लिए अंजू और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर के साथ।
1: तो श्रोताओं, पीयूष धारा इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर शांति महावीर जी को हम धन्यवाद देते हैं। भक्ति सागर यह कार्यक्रम चलता है हर गुरुवार को 4 बजे से 5 बजे के बीच रेडियो मॉरिशस पर, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाते हैं कार्यक्रम पीयूष धारा भी। श्रोताओं, कहते हैं जीवन में जिन भी व्यक्तियों से हम मिलते हैं, हमारा उनसे कोई ना कोई जो है बंधन अवश्य होता है, कोई ना कोई, जिसे हम कहते हैं ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। कहते हैं कि जिससे भी हम मिलते हैं, बिना कारण जीवन में कुछ भी नहीं होता है। जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, जिनके साथ हम मिलते हैं, जुड़ते हैं, जो भी अनुभव हम करते हैं, कहीं ना कहीं जो भी आते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ बता कर जाते हैं। हर एक के जीवन से हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं,

इन भक्ति गीतों के साथ हम भी ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहे हैं। कभी कभार जीवन में इतनी सारी जो है बहुत सारे संघर्ष होता है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती है, ऐसा लगता है कि चारों ओर से जो है हम परेशानियों से घिर गए हैं। उस समय कभी कभार अपने भी साथ नहीं देते हैं, अपने भी पराए हो जाते हैं और उस समय हम अपने आप को निराश पाते हैं, अकेला पाते हैं। लेकिन ईश्वर पर यदि विश्वास हो तो निराशा हमें कभी घेर ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर कोई अपना साथ दे या ना दे, ईश्वर जो है अपने भक्तों का साथ सदैव देता है और वही है जो हमें पार लगाता है।

जी हाँ, जिनके हृदय हरि नाम बसे, बस जिसके हृदय में ईश्वर का वास होता है उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अभी के लिए इन भक्ति गीतों को सुनते सुनते भक्ति सागर इस कार्यक्रम के लगभग अंत तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी ने इतने प्रेम से इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतिम आरती के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। साथ जुड़े रहिएगा, इस आरती के तुरंत बाद सदाबहार गीतों की शुरुआत होगी। तो ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर शाम के 6 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। धन्यवाद।

Precious. सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: गुरुवार 16 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। चलिए और यहाँ से सदाबहार गीत इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। हमारा और आपका साथ 6 बजे तक रहने वाला है। सदाबहार गीत यानी कि कुछ पुराने तराने, कुछ पुराने गाने ऐसे जो आज भी एवरग्रीन हैं, आज भी यादगार है, आज भी पॉपुलर है, आज भी हमारा दिल चाहता है इन गानों को सुने। तो चलिए ऐसा ही एक खूबसूरत सा सिलेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं दिन अच्छे से बीता होगा और अभी का ये जो टाइम है, बहुत सारे लोग घर पर जो है डिनर की तैयारी करते करते हमारे साथ जुड़ते हैं, गानों को गुनगुनाते गुनगुनाते शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे हमारे लिसनर्स, हमारे श्रोता ऐसे भी हैं जो काम से निकलते हैं, ड्राइव करते करते हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप सभी को भी हम शुक्रिया कहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आज के इस सदाबहार गीतों के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं संबंध फिल्म के इस खूबसूरत

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए सदाबहार गीतों में आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है। विश्वानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए। कह रही अभी मैं किचन में हूँ और बढ़िया बढ़िया गाने सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहे। और अब बारी है इस अगले तराने की। जी हाँ, सदाबहार गीतों में जो अगला गीत हमने आपके लिए चुना है वो है जब जब फूल खिले फिल्म का तराना, रफ़ी साहब और नंदा जी की आवाज़ों में। एक था गुल और एक थी बुलबुल। चलिए इस कहानी को सुनते हैं इस

0: तो चलिए इजाज़त फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत सा और दिल को छू लेने वाला तराना अभी आप सुन रहे थे आशा जी की आवाज़ में। इस गाने में संगीत था, इस गाने में संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने। ये फिल्म जो है गुलजार साहब की थी और जब भी गुलजार साहब, आर डी बर्मन जी और आशा जी साथ में आते हैं ऐसा ही मैजिक क्रिएट होता है।
1: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर

एक्चुअली इन गानों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम उस दशक में पहुंच गए हैं ना, जिस दशक में ये गाने बने थे, है ना। चलिए, गानों का मैजिक कहते हैं, म्यूज़िक का मैजिक ही कुछ ऐसा होता है कि हमें बस एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। देखते ही देखते शाम के पाँच बजकर छियालीस मिनट ऑलरेडी हो रहे हैं। सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो मॉरिशस पर हमारा साथ देने के लिए।

तो चलिए जीवन साथी साथ में रहना, अमृत फिल्म के इसी गाने के साथ अब बारी है आज के इस आखिरी गीत की, और जिसके साथ हमारी आपकी मुलाकात भी खत्म हो जाएगी। सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया जानकर हमें बड़ी खुशी हुई, और जाते जाते ये आखिरी तराना आप सभी के नाम हम करते हैं। 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर, और हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी कल सवेरे। आज की चर्चा इस प्रोग्राम में हम आपका साथ देने आएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। रेडियो मॉरिशस पर ऐसे ही साथ देते

0: रहिए। नमस्कार आप सभी को, शुभ संध्या हमारी ओर से।
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घर में मिलता चाहिए। शाम के ठीक 6:01 हुए हैं।

गुरुवार 16 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मॉरिशस की मजबूत अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए बढ़ते सार्वजनिक ऋण और वित्तीय दबावों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मॉरिशस में ईंधन आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक। देश के पास पेट्रोल डीजल का 18 दिनों और घरेलू गैस का 13 दिनों का भंडार उपलब्ध है। मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा। माइटी एआई समिट में प्रधानमंत्री ने वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी पहल की घोषणा की। मॉरिशस और अमेरिका ने व्यापार, निवेश और अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए नई साझेदारियों की संभावनाओं पर की अहम चर्चा। वैश्विक स्तर पर टीकाकरण में सुधार के बावजूद लाखों बच्चे अब भी सुरक्षा से वंचित। मॉरिशस में टीकाकरण कवरेज मजबूत। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की आराधना से जुड़ी पवित्र रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है भारत में।

0: इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन उसे लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और दबाव में आए पर्यटन क्षेत्र ने आर्थिक स्थिति पर असर डाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस सप्ताह मॉरिशस के साथ अपनी वार्षिक समीक्षा पूरी की। इस दौरान IMF ने सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर को लेकर चेतावनी दी है, जो जून 2025 के अंत तक सफल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 86% पहुंच गया था। साथ ही सरकार के वित्त पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई गई है। IMF ने पेंशन व्यवस्था से जुड़े सुधारों सहित सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारों की सराहना की है। हालांकि संस्था ने टिकाऊ आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बजटीय संतुलन सुधारने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। लैंगिक समानता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जूनियर अचीवमेंट मैस्केरेंस के बीच आज कुदो में गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर उपप्रधान एवं संबंधित मंत्री आयाना वमागी ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगी।
1: कुदो में जेंडर इक्वालिटी और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गैर सरकारी संगठन जूनियर अचीवमेंट मास्कागे के बीच इस समझौते पर हुए हस्ताक्षर से आधिकारिक तौर पर गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। मकसद है 35 साल या उससे कम उम्र की महिलाओं में रोजगार पाने की क्षमताएं बेहतर करना और उन्हें ठेकेदारी के प्रति प्रोत्साहित करना। किम्बली अमिया कहती है, मेरा अपना कारोबार है, मैं बायो पैदावारें तैयार कर

0: करती हूँ, अब मैं और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रही हूँ। एस्टेल जमा कहती हैं, मैंने होटल में 8 सालों से पेस्ट्रीज में काम किया है, अब मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहती हूँ और अपनी तरह के नौजवानों के लिए उदाहरण बनना चाहती हूँ। जूनियर चेयरमैन मस्काहे की गोल कोच ओसियान फोंट कहती हैं, इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को कई महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, खासकर उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा। अपने भाषण में उपप्रधान और जेंडर इक्वालिटी मंत्री आरियान नावामागी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जरूरी साधन उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम कमजोर वर्ग की युवा महिलाओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। वे कहती हैं, जनता में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं और इनमें ज्यादातर घर पर रहने वाली महिलाएं हैं, जिनका योगदान आर्थिक आंकड़ों में तो नहीं दिखता, लेकिन जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं जूनियर अचीवमेंट मस्काहे के अध्यक्ष रोशन रामोली के अनुसार, ये प्रोग्राम महिलाओं को अपना जीवन बदलने में मदद देगा। वे कहते हैं, कई महीनों का प्रशिक्षण होगा, इसके तहत मेंटर्स और विशेष पेशेवरों की मदद मिलेगी, दूसरे कारोबारों के साथ सहयोग कायम कराया जाएगा और नए कारोबार शुरू करने और बिक्री के लिए भी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। याद रहे कि इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग 21 जुलाई से शुरू होगी।
1: मॉरिशस टेलीकॉम के ऑल माइटी समिट का आज सुबह पाई स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आधिकारिक शुरुआत हुआ। डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। यह आयोजन वर्ष 2026-2027 के बजट के उस दृष्टिकोण के रूप के अनुरूप है, जिसमें प्रौद्योगिकी को मॉरिशस के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी कार्यक्रम से जुड़ेगा। यह रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमेरिका, भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्क को और मजबूत करेगी। लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित AI समिट के दौरान की थी। पोर्ट लुइस की ट्रेजरी इमारत में आज दोपहर शिष्टाचार भेंट के दौरान मध्य अफ्रीकी मामलों तथा व्यापार एवं आर्थिक मामलों की डेप्यूटी अमरीकी सहायक उप विदेश मंत्री सारा स्ट्राउटमैन ने प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए अवसरों की तलाश पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मॉरिशस की आर्थिक समझौतों में भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया गया। आर्थिक समझौते अंतरिक्ष क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। राष्ट्रीय अवसंरचना मंत्री अजय गणेश ने बुधवार 15 जुलाई को यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने से जुड़ी दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा लिया। त्रियानो में उन्होंने नई पेलगन त्रियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया, जिसे 43 मिलियन रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके बाद मंत्री फ्लिकॉफ्लाक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रस्तावित बाईपास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना की अनुमानित लागत 160 मिलियन रुपए है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाना है।
2: त्रियानो इलाके से गुजरने वाली गाड़ी चालकों के लिए अब से एक नया मार्ग उपलब्ध। 43 मिलियन रुपए की लागत में त्रियानो लिंक रोड का निर्माण। ये पिची कॉम्ब्रांच रोड को एबेन में M3A40 नए रावरावाट मार्ग से जोड़ेगी। इस संपर्क से परिवहन को लेकर बेहतर स्थिति होगी, साथ में मोटरवे M1 में वाहनों की आवाजाही में आसानी होगी और त्रियानो, पिचिका और एबेन के बीच फासले में कम समय लगेगा।
3: इसके
2: बाद रुख फ्लिकॉफ्लाक, जहां पर मंत्री ने भावी बाईपास के निर्माण स्थल का दौरा किया। अनुमान है कि 160 मिलियन रुपए की जरूरत होगी। इस नए मूल ढांचे का मकसद है मुख्य सड़क के लिए एक वैकल्पिक रास्ता, क्योंकि अक्सर वहां परिवहन समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे फ्लिकॉफ्लाक की ओर और इलाके के स्थलों में आवाजाही में सुविधा होगी।
4: फ्लिकॉफ्लाक चैन कुल दे साक ओ रेंट्रे ओ सोर्टी पर मेम शेमें मेंटेनेंट ओन अ डे शेमें ए पॉसिबलीमेंट

0: ये दो परियोजनाएं राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने और देश भर में सड़क का इस्तेमाल करने में सुधार लाने के मकसद से सरकारी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है।
1: जैसे कि आपको हम बता रही थी कि मॉरिशस टेलीकॉम की ऑल माइटी समिट का आज सुबह 22 स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शुभारंभ हुआ है और इसके अंतर्गत उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमरीका इंडिया कनेक्ट सबसे कार्यक्रम से जुड़ेगा। यह रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमरीका भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्कों को और मजबूत करेगी। इसमें लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर की घोषणा की गई है के बारे में अब बात की गई है। इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित एआई समिट के दौरान की थी। अदिति अवतार।
2: मॉरिशस टेलीकॉम द्वारा पाई में आयोजित ऑल माइटी समिट बजट 2026-2027 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें टेक्नोलॉजी को विकास और कम्पेटिटिवनेस का मुख्य आधार माना गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस की डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के मकसद से एक रणनीतिक परियोजना की घोषणा की।
3: I am pleased to confirm today that Mauritius will participate in the America-India Connect subsea cable program. This is the major, major leap forward. This major international project will add a vital layer of resilience to our digital infrastructure and reinforced strategic routes towards South Africa, India, and Singapore. Mauritius is becoming, in the most concrete sense, a digital bridge between Africa and Asia.
2: Google company ki taraf se 15 billion dollar ki funding wale America India Connect subsea program mein Mauritius ki bhagidari ek mahatvapurna uplabdhi mani ja rahi hai.
4: Déjà, Maurice, nous pouvons augmenter l'utilisation de la bande passante internationale, qui veut dire qu'il nous pouvons encore. Et quand nous causons internationalisation, nous causons FDI, nous aussi causons un expo de bande service de l'Internet. Mais quand nous avons une qualité câble, bien sûr, il ouvre le chemin pour investissement additionnel à Maurice et aussi pour qu'il y ait une entreprise mauricienne capable de déployer ses services en ligne à partir de Maurice.
2: मॉरिशस टेलीकॉम के चेयरमैन सगत लाला ने मॉरिशस को एक वास्तविक रीजनल हब बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए बड़े निवेश पर बल दिया।
5: टुडे मॉरिशस टेलीकॉम कंटिन्यू टू इन्वेस्ट हेवीली इन इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज साइबर सिक्योरिटी एंड नाउ डीपली इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and our human capital.
2: इस सम्मेलन के अंतर्गत मॉरिशस टेलीकॉम और अमेज़न वेब सर्विसेज के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये दोनों कंपनियों के CEO विमल गंगादीन और सब सहारन अफ्रीका के लिए AWS की मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति बाल की उपस्थिति में चला। दोनों साझेदार प्रतिभाओं के विकास, नवाचार और अनुभवों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करेंगे। इस दूसरे ऑल माइटी समिट में माइटी की नई पहचान पेश की गई, जो पूरी तरह से कनेक्टिविटी, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। ये गतिविधि इस शुक्रवार को समाप्त होगी, जिसमें मॉरिशस सहित कई देशों के 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
1: देश में ईंधन भंडार की स्थिति के अनुसार मॉरिशस के पास वर्तमान में 18 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल का भंडार उपलब्ध है, जबकि घरेलू गैस का भंडार 13 दिनों के लिए पर्याप्त है। वर्तमान ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी के पास कीमतों की समीक्षा के लिए 19 अगस्त तक बैठक आयोजित करने का समय है। अन्य खबरों में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आब्रवासी घाट एक महत्वपूर्ण वर्षगांठ मना रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मॉरिशस में गिरमिटिया प्रथा के इतिहास के प्रतीक इस महत्वपूर्ण स्मारक की विरासत को संरक्षित करने के महत्व को एक बार फिर याद दिलाती है। आब्रवासी घाट देश के इतिहास और उन हजारों श्रमिकों की स्मृतियों से जुड़ा एक प्रमुख स्थल है, जिन्होंने अनुबंधित श्रम व्यवस्था के तहत मॉरिशस का रुख किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले कनाडा में इस समय 800

0: उससे अधिक जंगलों में आग सक्रिय रूप से जल रही है, जिसका असर अब अमरीका के कई राज्यों तक पहुंच गया है। धुएं के कारण वायु गुणवत्ता को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। अमरीका के उत्तरी राज्यों मिशिगन, मिनेसोटा और मिनियापोलिस के बड़े हिस्सों में वायु गुणवत्ता को अमरीकी वायु गुणवत्ता सूचकांक कार्यक्रम ने खतरनाक श्रेणी में रखा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे घरों के अंदर रहें और बाहर निकलने से बचें। अमरीकी राष्ट्र मौसम सेवा के अनुसार वायु गुणवत्ता संबंधी चेतावनियां अब अपर मिडवेस्ट, ग्रेट लेक्स क्षेत्र और अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक फैल गई है। कैनेडियन इंटर रेजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के मुताबिक कनाडा में वर्तमान में 857 जंगलों की आग सक्रिय है, जिनमें गुरुवार को लगी यानी कि आज लगी 23 नई आग भी शामिल है। और उधर टीकाकरण के क्षेत्र में सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने एक मिश्रित तस्वीर पेश की है, जहां वैश्विक स्तर पर टीकाकरण कवरेज में लगातार सुधार जारी है, वहीं अब भी लाखों बच्चे आवश्यक सुरक्षा से वंचित हैं या अपना पूरा टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं। संघर्ष, आबादी का विस्थापन और गरीबी जैसे कई कारण बच्चों के टीकाकरण अभियान के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। वहीं मॉरिशस में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़े देश में टीकाकरण की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। और अंत में आपको ले चलती हैं भारत की ओर। जगन्नाथ उत्सव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। ये पर्व भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। जगन्नाथ उत्सव में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मुख्य आराध्य देवता मानी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, इस पावन उत्सव के केंद्र में होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गोकुल से मथुरा की दिव्य यात्रा करती हैं। ये रथ यात्रा भक्ति, आस्था और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृति का प्रतीक मानी जाती है। देश विदेश में लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेते दिख रहे हैं। इस पर प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट।
1: जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक उत्सवों में से एक है। ये हर साल ओडिशा के पुरी शहर में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालाभद्र और बहन सुभद्रा को उनके मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक विशाल रथों पर ले जाया जाता है। इस पवित्र यात्रा को देखने और इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस यात्रा को प्रेम, भक्ति और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक भी माना जाता है। रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें तीनों देवताओं का 108 कलशों के पवित्र जल से महाअभिषेक किया जाता है। रथ यात्रा के दिन तीन अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, दूसरा बालाभद्र के लिए और तीसरा देवी सुभद्र के लिए। इन रथों को हर साल परंपरागत विधि के अनुसार बनाया जाता है। हर रथ की ऊंचाई, रंग और पहचान अलग होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का संदेश केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। ये उत्सव समानता, सेवा, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस यात्रा में किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है और उनके रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इसी कारण जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा को भारत की सबसे विशाल और लोकप्रिय धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है।
0: बात करते हैं अब हम फुटबॉल के बारे में। अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी ने विश्व कप के लगातार दूसरे फाइनल में जगह बनाने के बाद अपनी टीम की शानदार वापसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने आखिरी मिनटों में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता दिखाई। अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए स्कालोनी ने कहा कि टीम के हर खिलाड़ी को इस चयन में अपनी जगह पूरी तरह से हासिल है और सभी खिलाड़ी इस स्तर पर खेलने के योग्य हैं। इस पर ज्यादा जानकारी अरविंद बिसेसा दे रहे हैं।
2: अर्जेंटीना ने एक बार फिर ऐसा मैच खेला जिसकी कहानी सिर्फ वही लिख सकता है। आखिरी मिनटों तक पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया और इस रविवार को वे अपने वर्ल्ड कप खिताब को बचाने उतरेंगे। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त शारीरिक

मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान 19 फाउल हुए और मैच में काफी आक्रामकता थी, लेकिन कोई भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा। हाफ टाइम के बाद द थ्री लायंस ने आखिरकार अपनी दहाड़ दिखाई। 55वें मिनट में एंटोनी गोडन ने गोल करके इस वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल दागा। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से ही हार न मानने वाली टीम अर्जेंटीना फिर से हिम्मत नहीं हारी। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने मैच के आखिरी 30 मिनटों में पूरी तरह दबदबा बनाया और गेंद को अपने पास ही रखा। यह लगातार दबाव रंग लाया। 50वें मिनट में एंजो फर्नांडेज ने मेसी के पास पर एक बेहतरीन शॉट लगाकर दोनों टीमों को 1-1 की बराबरी पर लाखड़ा किया। जब ऐसा लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, तब लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। इंजुरी टाइम में उनके एक सटीक क्रॉस पर लुटारो मार्टिनेज ने शानदार हेडर के जरिए अर्जेंटीना को जीत दिला दी। इस मैच में 2 असिस्ट करने के साथ ही लियोनेल मेसी अब अपने कार्य का 3रा वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा। अब सबकी नजरें उस बड़े मुकाबले पर हैं जिसका सबको इंतजार था, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। एक तरफ लियोनेल मेसी लगातार दूसरा टाइटल और अपने देश के लिए 4था स्टार जीतने की कोशिश करेंगे, दूसरी ओर लामिन यमाल लाहोआ को दूसरे वर्ल्ड कप खिताब दिलाने के इरादे से उतरेगा। यह फाइनल मुकाबला इस रविवार रात 11 बजे MBC Sports 11 पर लाइव दिखाया जाएगा।

0: बढ़ते हम अब मौसम के हाल की ओर आस्था गोविंद चितमन के साथ।
1: देश के उत्तर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। कल सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी। बाद में देश के पश्चिम में रह रहकर बरसात हो सकती है। दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम सहली इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:47 पर, सूर्योदय कल सवेरे 7:45 बजे।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसोल पर हमारे सहयोगी आवी हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, कुछ ही देर में हम बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू जैक्सन कैटरबोन में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती द्रौपदी भगवंती, जिन्हें शारदा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल मां की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पितों में 13 साल के 13 ईयर्स ओल्ड के कुमार हर्ष गुलब, जिन्हें हरीश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पिता धीरज गुलब के घर लापे पितों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस पितों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। एवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रगुप्त पुनित, जिन्हें मुकेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियानों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुबोर वाटर 1 PM। महात्मा गांधी रोड लालमाटी में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंपावती हरी, पैदाशी नाम जीतन, और जिन्हें कुसुम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई।

करनी है उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके जीजा सतीश हरी के घर गांधी रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2 PM। एवेन्यू रोड सवान रोड नुवेल फ्रांस में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री जमुन सिंह बासुदेल सिंह जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गामजी लेन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 11:30 AM। नंबर 94 ग्रानम रोड वाकुआ में 69 साल के सिमों अरी क्लेन सुताना जिन्हें एनरी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 10 AM। ऋषि दयानंद रोड मोटसिनियर सुरीनाम में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अस्वंती जादू पैदाश्रम कतवागो जिन्हें अस्वंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति दुलम जादू के घर ऋषि दयानंद रोड मोटसिनियर सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमोरो 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शनिवार 18 जुलाई 2026 सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हाईलैंड्स और आसपास के इलाकों में बासन रोड और उडाली रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और शनिवार 18 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक हाईलैंड्स और आसपास के इलाकों में रॉयल रोड में भी बिजली में सप्लाई की कटौती लाई जाएगी। और रविवार 19 जुलाई 2026 सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक हाईलैंड्स में मौसलमा उमनिकेन में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और एमिताज मौसलमा दुमा मौसलमा फरीदन बेलरिव रोड अनवर एक उबा रोड तेरूज रोड और एमिताज रोड और सैंक ओपन रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।

毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台819频道，我是您今天的节目主持人张大卫。

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamu alaikum.
3: Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shatrandriki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर.

के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम है। आपका अभिवादन करते हैं रेडियो मॉरिशस पर। कार्यक्रम है भजते प्रभु का नाम, साथ दे रही है देवीना। श्रोताओ, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है वहां सुख शांति तथा समृद्धि स्वयं अपना मार्ग खोज लेती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ पल ईश्वर के स्मरण के लिए अवश्य निकालें। आइए इसी सुंदर विचार

श्रोताओ, गुरुवार का यह पावन दिन भगवान विष्णु तथा देव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। आइए आज के शांत तथा पवित्र वातावरण में प्रभु का स्मरण करें तथा अपने मन को भक्ति के रंग में रंग दें।

रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं भजले प्रभु का नाम। वैसे प्रभु के मधुर नाम का स्मरण मन को कितना सुकून देता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हमारा विश्वास ईश्वर पर अटल है तो हर अंधेरा एक दिन प्रकाश में बदल जाता है।

बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। प्रिय श्रोताओं, जीवन में धन पद तथा प्रसिद्धि क्षणिक है, परंतु अच्छे संस्कार, सच्ची श्रद्धा तथा सेवा भाव हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर उसी के जीवन में कृपा बरसाते हैं जो विनम्रता, प्रेम तथा सत्य का मार्ग अपनाता हो। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है, जबकि विनम्रता उसे प्रभु के और निकट ले आती है।

प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा साथ यही तक। आशा है कि इन भजनों तथा विचारों ने आपके मन को शांति तथा नई ऊर्जा से भर दिया होगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा सद्बुद्धि प्रदान करें, आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

सामीन मोहतरम, बेटियों की बेहतरीन परवरिश का अजर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दो बेटियों की उस वक्त तक अच्छी परवरिश की जब तक वो बालिग न हो गईं, क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को मिलाकर दिखाया। सामिन मुख्तरम, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। खुदा से दुआ है कि वो हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ महफिल शब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music all day, all
3: NBC
2: night.
3: NBC TV, rangeen programo ka khazana.
4: Main kisi aur aadmi ke saath kuch nahi karne wala. सैम को पहले ही कह चुका हूँ, अब तुम भी सुन लो।
5: कुणाल, प्लीज डोंट डू दिस मी राइट नाउ। मेरा बॉस कभी भी आता होगा, सैम ने मुझे प्रॉमिस किया था।
4: लेकिन मैंने प्रॉमिस नहीं किया था ना।
5: तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, जब एम यहाँ आएगा यू हैड बेटर बी रेडी।
3: रविवार 19 जुलाई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दोस्ताना, रोमांटिक कॉमेडी मूवी जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन पर फिल्माई गई दोस्ताना। भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 9:03 होल बा और जैसे देखा था वा जलसा के रात शुरू होई के समय हो गल बा और ये बखत आप सुना था वा अपन मनपसंद प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तरका और पहला गीत आप सब कोई के मनपसंद कलाकार कुणाल हिरीलाल के आवाज़ में आप सब कोई के ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। हम किरण हमर सब प्रेम नमस्ते स्वीकार करा और हमेशा के तरह बीफे के रात के हमने के मुलाकात होवेला बहुत प्यार के साथ बहुत बेसब्री के साथ इस दिन के इस समय के इस वक्त के इंतज़ार रहेला और अभी जो मौसम बाहर चला था थोड़ा ठंडा तो कहूँ थोड़ा गर्म और ऐसन में बीमारी थोड़ा बढ़ाता कहूँ तो थोड़ा कमती भी होता तो आपके चाहिए अपन ख्याल भरपूर रखे के और जब ख्याल रखे के बात चलेला तो वो खाली शारीरिक मानसिकता के ख्याल नहीं रखे के बल्कि आपके मन आपके जहन आपके चेहरा एकर भी ख्याल चाहिए बहुत ज़्यादा रखे के और जब आपके चेहरा ठीक रही मन ठीक रही मिजाज ठीक रही तो आपके शरीर भी सही रही तो चला आपके ई मनपसंद प्रोग्राम के शुरू करत है जा और कार्यक्रम तो शुरू हो ही गल लेकिन अब आपके फ़ोन कॉल्स के इंतज़ार रही अभी से रात के 11 बजे तक जिसे सुना था हुआ फ़ोन कॉल बजे के शुरू हो गल तो चला कार्यक्रम के जारी रखब जा और आपके फ़ोन कॉल्स एक के बाद एक ले लीजिए।

रात के 9:14 होल बा और आप लोग के फोन कॉल्स भारी संख्या में आवा था। एक अर से आगे एगो छोटा खराबी रहा, लेकिन अब आपके फोन कॉल्स सकब जाले हुए। अभी फोन कर लन पितों से अमृता गणेश जी और आप स्नेहा सोनिया परी विशान और मीनाक्षी के नाम और पूरा गणेश परिवार के नाम ये अगला गीत करे चाहता हुआ। और आपके मनपसंद गीत में बा कोहरिन के खेत किसनवा धान रोपेला लीलो माथुर के आवाज़ में। और ये गीत जितना कोई खुशी रहेला जा सुने के आप सब कोई के नाम। तो चला पीतों से अमृता गणेश के फरमाइश पर ये गीत सुनी जा।

लीलो माथुर के आवाज में ई भावुक गीत के बाद जोन अगला गीत चली वो भी एगो ऐसन ही भावुक ही गीत बा, लेकिन आवाज अबरीहला रही ज्ञान महिपतलाल जी के। और ज्ञान महिपतलाल जी के आवाज में ए बबुआ तू न रो ये गीत सुने चाहत हवन आत्माराम जी, आत्माराम जी जे बेलिया से हवन और बोलत हवन कि उनकर तबीयत ठीक नहीं बा, आप बीमार हवा और हमने सब कोई के प्रार्थना, हमने सब कोई के प्यार और आशीर्वाद आप संगे बा आत्माराम जी। आप बोलत हवा कि हॉस्पिटल जाइबा अभी और थोड़ा दिन में, तो हम यही दुआ करत है जा, यही प्रार्थना करत है जा कि अस्पताल से जब अब तोहर तबीयत एकदम ठीक हो जाए और हमने के शरीर समय के साथ जैसे जैसे वृद्धावस्था आवेला वैसे वैसे दर्द और बीमारी भी बढ़ले जाला और एकर संगे संगे और एगो चीज बढ़ेला ऊह ई सब कुछ सहन करे के शक्ति। भगवान आपके जे ई बीमारी देवता जे ई दर्द आपके नसीब में बा त आपके भगवान के ओर से बहुत बहुत शक्ति भी मिली, बहुत शक्ति मिला था और आप सब कोई जितना कोई अभी बीमार हवा जा दुख दर्द में हवा जा हमने के यही आशीर्वाद बा यही प्रार्थना बा कि आपके सेहत ठीक रही और जो दुख दर्द बा वो कमती तो होइबे करी लेकिन ओके सहन करे के शक्ति भी आपके भरपूर मिली और आपके प्यार और मोहब्बत और एगो अच्छा वातावरण में रहे के भी शुभ अवसर मिलते रही। तो चला ई जोन गीत बा ए बबुआ तू ना रो आत्माराम जी के ओर से उनकर चार गो बहिन ललिता सुदेवी छोटी और प्रभावती के नाम और आप सब कोई के नाम जेके ई गीत पसंद बा।

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: देखिए, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आज तक मैंने आपको पलट कर देखा तक नहीं, फिर भी आप मेरा पीछा कर रहे हैं।
2: 4 साल में पहली बार उसने मुझसे बात की, ये मेरे प्यार की जीत की पहली निशानी है। आई लव हर।
3: पहली बार है।
0: शुक्रवार 17 जुलाई को MBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्या यही प्यार है 2002 की मूवी जैकी श्रॉफ और आफताब शिवदासानी पर फिल्माई गई क्या यही प्यार है

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: आज बीफे के 16 जुलाई 2026 तारीख है और आज के दिन एगो खास दिन है। आज के ही दिन हमने के देश में एगो विश्व धरोहर है, एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो पहला हमने के देश में एकर अंकन हो रहा। और आप जानेला हमने के पूर्वज उ जगह पर उतरल रहन सा, शहर में उ जगह पावल जाला, हम ओकर नाम नहीं लेव, आप इशारा समझ गल हुई बा। उ साइट के ई जन विश्व धरोहर सूची बा यूनेस्को के, ओकर में शामिल होइला आज पूरा 20 बरिस हो गल। तो उ साइट के जन्मदिन खातिर बहुत बहुत शुभकामना। हमने सब पूर्वज लोग के बहुत बहुत श्रद्धांजलि, जे लोग के बदौलत हमने यहाँ ऐसा, जे लोग के बदौलत हमने के ई भोजपुरी भाषा, ई भोजपुरी गीत संगीत और संस्कृति यहाँ पर बनल बा। और साथ ही साथ आज हमने हाई सता उलुगी के बदौलत, आज हमने खुशी मनावत है जाता उ लोग के बदौलत, ऐसे ही एगो खुशी के मौका आज मनावत हवन सुरेखा जी अपन परिवार के साथ। और सुरेखा जी ब्रह्मस्थान से हवन, आपके सहेली स्वस्ति के आज जन्मदिन बा। और आज हमने एगो ऐसा दुनिया में जिला जा जहाँ हमने के दोस्त, हमने के सहेली परिवार से भी बढ़ के रहेला, और हित मित्र परिवार सगे संबंधी के साथ जिए के ही नाम हा मनुष्य के जीवन। हमने एगो सामाजिक प्राणी है जा। तो सुरेखा जी अपन सहेली के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना प्रकट करत हवन। उनकर साथ स्वास्थ्य जी के पतिदेव हवन दया, उनकर बेटी विमी, वनिशा और वर्षा, आप सब कोई के ओर से स्वास्थ्य जी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। बसंत सुपोल के आवाज़ में सुरेखा जी गीत सुनावे चाहत हवन, हैप्पी बर्थडे। और स्वास्थ्य जी के साथ साथ जेकर भी आज जन्मदिन बा, आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई।

ई बखत आप हमने के सुना था वह रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर, और अभी से रात्रि के 11 बजे तक हमने के साथ रहे होला बा। लगभग आधा घंटा तक खत्म हो गल और आपके फ़ोन कॉल्स भारी संख्या में आवता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के मैसेज भी आवता। ई मैसेज जो आप भेजेला 5251705 पर, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज सकबा भेजे। बहुत कोई भेजे ला जा तो ये सब मैसेज भी अभी पढ़ब जा। अगला जोन गीत चली, ये गीत के फरमाइश करत हवन सुनीता जी घोंगोप से अपन दूगो बहिन के नाम अमृता और विमाला के नाम, विमाला कोंगोमा से हवन। और ये अगला गीत है रंभा राम दोहल के आवाज़ में विश्व मशहूर वर्ल्ड फेमस जुबेदा लुतु लेके जाए। और ये गीत सुने के इच्छा रखत हवन भाई अब्बू, भाई अब्बू जे हमेशा सुने लन हमने के प्रोग्राम आप ही की तरह। और उनकर एगो भतीजी हवन जे अभी तक बीमार हवन रकीबा, आपके भी हमने के दुआ हमने के प्रार्थना आप संगे बा। और रकीबा के मामू भाई अब्बू बोलत हवन कि रात दिन वो अपन भगिनी के सेहत खातिर दुआ करत हवन। तो चला हमने सब कोई मिल के आप खातिर खुशी दुआ सेहत के मांग करत है जा। और भाई अबू ई गीत रकीबा के साथ साथ अफेज, जयर, जहीरा, रईस, काला चोटी और अपी और उनकर बीवी के नाम करत हवन। तो चला ई सुंदर गीत सुनी जा जे हमके भी और आपके भी बहुत पसंद है।

देखते देखते रात के 10 बजे के बाद और 15 मिनट में रात के 10 बज जाए और फिर एक घंटा और हमनी के साथ रही, पूरा एक घंटा। और अगला जो गीत चली शिव के महिमा लीलो माथुर के आवाज़ में, ये गीत सुने चाहा था वन शीला जी, और आप अपन पति के साथ ये गीत सुना था वा, और अपन पूरा परिवार सब लड़का लोग के नाम ये गीत कर रहा था वा। तो चला शिव के महिमा सुनी जा लीलो माथुर के आवाज़ में, और जितना कोई भी कोनो भक्ति गीत सुने चाहा था वा जा, तो ये अगला गीत आप सब कोई के नाम।

0: का किरण संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: हमने तुझे बहुत भरोसा किया, 20 दिन के लिए हमने तेरे लक पर इन्वेस्ट किया। आज तुझ पर बहुत पैसे लगे हुए हैं और तू जाना चाहता है।
2: मैं जाना चाहता हूँ।
3: अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? तुझे यह लाया कौन? तेरा लक। और तुझे भेजेगा कौन? तेरा लक। अब तुझे तेरे लक से ही तेरे पासपोर्ट को जीतना होगा।
0: रविवार 19 जुलाई को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म लक, 2009 की मूवी हिंदी फीचर फिल्म लक। तस्वीरें देखी। Don't even try. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
5: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
6: Your kind of music, all day, all night.

आवे के। अब जो अगला गीत चली, ये अगला गीत के फरमाइश अल्बा सेज़ियमिल से, सेज़ियमिल फॉरेसाइड से, हमेशा हमने के सुनेलन शांता सुकारी जी, और आप सुने चाहत हवा अपना दुहब ढहर गैया यशोदा मैया। ये गीत आप नाम करत हवा अपन पूरा परिवार के, आपके बेटा रविन, पतो किरण, बेटी संजना, बेटा सुदेश, और जितना भी नाती पोता बा, जितना कोई अभी आपके सुनत हवन जा, सब कोई के नाम आप ये गीत करत हवा। और शांता जी भी बोलत हवन कि उनकर भी तबीयत उतना ठीक नहीं रहेला। देखा आप में से बहुत कोई बोले रंजा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं बा, फिर भी आप लोग फ़ोन करेला जा, ये प्रोग्राम के सुनेला जा, इंतज़ार करेला जा, बातचीत करेला जा, और ये बहुत अच्छा बात बा कि आपके एगो मनोरंजन के एगो स्रोत बा। ये कार्यक्रम से आपके मनोरंजन तो होइबे करेला, साथ में आप वो सब गीत सुने सकत हवा जा जो आपके पसंद रहेला। और बोलल जरा अंत गति सोमति, मतलब कि जोन आपके सबसे अंतिम विचार रहेला आपके गति वैसे ही होवेला, अंत मति सो गति। और रात के सुते से आगे जोन जोन सोच आपके दिमाग में आवेला, वो पूरा रात आपके सहन में काम करेला, और अगला दिन वो ही सच्चाई के रूप लेवेला। ये खातिर बहुत ज़रूरी है कि रात के सुते से आगे आप अच्छा अच्छा चीज सुनबा, सोचबा, देखबा, और फिर नींद में जाइबा। तो चला ये सुंदर गीत आप सब कोई के नाम, खास तौर पर शांता सुकारी जी के फरमाइश पर।

इबखत रात के 10 बजकर बा और एक घंटा से कमती समय बा हमनी के पास ई प्रोग्राम के आगे बढ़ावे में। और अगला जो गीत चली माँ बाप भगवान है चंद्रदेव जिबोधन के आवाज़ में ई गीत सुने चाहत हवन तेगोश से शांति जी। शांति जी ई गीत जितना कोई ई बखत ई प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के परिवार के नाम करत हवन। आप बोलत हवा कि हमार परिवार के भी नाम ई गीत आप करत हवा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके दागोचिया के मराठी परिवार, अपर दागोचिया के आपके भगीना ओम के नाम, और जितना कोई ई समय सफर करत हवा जा आप सब कोई के नाम ई अगला गीत माँ बाप भगवान है चंद्रदेव जिबोधन के आवाज़ में।

धनाजी नावजी के आवाज में जवानी के रे धुआं उड़ैले चलल जाला। ई गीत खास तौर पर वाशिरी के धनी जी के नाम।

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: देखिए, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आज तक मैंने आपको पलट कर देखा तक नहीं, फिर भी आप मेरा पीछा कर रहे हैं।
2: 4 साल में पहली बार उसने मुझसे बात की, ये मेरे प्यार की जीत की पहली निशानी है। आई लव हर।
0: शुक्रवार 17 जुलाई को MBC4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्या यही प्यार है 2002 की मूवी जैकी श्रॉफ और आफताब शिवदासानी पर फिल्माई गई क्या यही प्यार है।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन रेडियो।

0: 道。
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
2: और अगला जनगीत चली ई गीत के फरमाइश कर ले हवन वाकवा से विश्वानी दोमन जी और आप सुने चाहता हुआ बसंत सुपोल के आवाज में लाल लाल फूल और ई गीत आप अपन बहिन इंदिरा और शारदा और आप अपन सहेली नीला और प्रतिभा और शोभा और गीता गजाधर खातिर मांगत हवा चला विश्वानी दुमन जी आपके फरमाइश पर बसंत सुपोल की आवाज में लाल लाल फूल

0: संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: हमने तुझे बहुत भरोसा किया, 20 दिन के लिए हमने तेरे लक पर इन्वेस्ट किया। आज तुझ पे बहुत पैसे लगे हुए हैं और तू जाना चाहता है।
2: मैं जाना चाहता हूँ।
3: अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? तुझे यह लाया कौन? तेरा लक। और तुझे भेजेगा कौन? तेरा लक। अब तुझे तेरे लक से ही तेरे पासपोर्ट को जीतना होगा।
0: रविवार 19 जुलाई को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म लक, 2009 की मूवी हिंदी फीचर फिल्म लक। तस्वीरें देखी। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
5: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
6: Your kind of music, all day, all night.
7: अगला जिन गीत चला था उहा सुनानो यान के आवाज में, हमने के देश के भोजपुरी गीत के सम्राट स्वर्गीय सुनानो यान, और ये गीत सुने चाहा था वन वाकवा से सुदेवी जी, और सुदेवी जी ये गीत नाम करा था वन अपन दीदी ललिता, कुशल परिवार, आत्माराम भैया, सुनीता दीदी, शोभा देवीना, मालेगा के रामरतन परिवार, और जितना कोई अभी हमने के सुना था वजह, आप सब कोई के नाम वाकवा के सुदेवी के ओर से।

रात के 10:30 हो गल बा और ई बखत जितना कोई सफ़र में हुई बजा, जितना कोई गाड़ी चलावत हुई बजा या फिर सफ़र के आनंद उठावत हुई बजा, तो आप सब कोई के नाम आशीष रामफल के आवाज़ में ई अगला गीत और ई गीत ख़ास तौर पर अनीता जी के नाम जे फ्लिक ऑफ लक से हवन, और ई गीत आप अपन पूरा परिवार, अपन सब दोस्त और ई बखत जितना कोई ई प्रोग्राम सुनत हवजा, आप सब कोई के नाम अनीता जी ई गीत करत हवन।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

रात के 11 बजे में और 15 मिनट कमती बा और आप लोग बहुत प्यार के साथ साथ देला जा हमेशा की तरह आप सब कोई के बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। आज के रात आप सब कोई के अच्छा से बीती। ई महीना के मध्य में चला रही सर जुलाई महीना के और देखते ही देखते ई जोन बरिस बा एकर 7 महीना पूरा हो जाए। जैसे अभी तक आपके दिन चल ले आवा था यही उम्मीद यही आशा यही शुभकामना बा कि अभी से आगे एकर से और अच्छा दिन आए। आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। हमने के मुलाकात कल फजर के फिर से हुई हमारी धरोहर में और नहीं तो आवत बीफे के फिर से मिलब जा। आप सब कोई के शुभरात्रि नमस्ते और बहुत बहुत शुभकामना।

का किरण संगे। जिंदगी के

0: अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

0: मिलेगा किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
3: हम फिर से आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। वैसे क्या आपको पता है कि जिंदगी कितनी भी बदल जाए, फैशन बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल के करीब रहते हैं। आज के इस खूबसूरत सफर में हम उन्ही गीतों को फिर से महसूस करेंगे। शायद आप भी किसी गीत के साथ अपनी जिंदगी का एक हसीन लम्हा याद कर ले। मैं हूँ गिनिशा, जो बड़े प्यार से आपका साथ देने आ गई हूँ, और ये है आपका सुनहरे पल सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

0: परवाना कहे, कोई परवाना कहे जलने को बेपरार। चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू अय्या।

0: चौंको मत ऐ दोस्तो, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु

0: घुटते बेबसी सहमी सहमी हर घड़ी बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए
1: अय्या सुकु सुकु
0: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु अय्या

0: वैसे देखा जाए तो हर रात की अपनी एक कहानी होती है, और अगर उस कहानी के साथ पुरानी बॉलीवुड का एक मधुर गीत जुड़ जाए तो रात और भी खूबसूरत बन जाती है। तो दोस्तों, अपनी सारी फिक्रें कुछ देर के लिए भूल जाइए, दिल को सिर्फ गीतों के हवाले आप कर दीजिए, और बस हम आपका साथ देंगे सुनहरे पल में रात के 12 बजे तक।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

स्वागत तो हमने बड़े प्यार से आप सभी लोगों का कर लिया और उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप महसूस कर रहे हो। ये वो महफिल हैं जहां यादें भी मुस्कुराती हैं और गीत भी दिल को छू जाते हैं। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर, पुराने बॉलीवुड के वो नगमे जो कभी भी अपनी चमक नहीं खोते और आज फिर से आपके लिए सज गए हैं ये खूबसूरत सी सुनहरे पल। तो चलिए मिलकर यादों की इस महफिल को और भी हसीन बनाते हैं और अगला नगमा हम आपके देखिए आपके लिए डेडिकेट करना पसंद करेंगे। आप बस आराम से बैठ जाइए और दिल खोलकर बस सुन लीजिए इस खूबसूरत से गीत को।

देखा जाए तो कुछ रिश्तों को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ गीतों को किसी की पहचान की जरूरत नहीं होती है, बस पहली धुन बजते ही और दिल खुद ही गुनगुनाने लग जाता है। इसी एहसास के साथ हम आए हैं आपका साथ देने के लिए सुनहरे पल में सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। वैसे अगर आप काम पे हो तो कुराश, बो कुराश टू यू माय डियर।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आज फिर एक बार वक्त की घड़ी को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, उन फिल्मों में, उन कलाकारों के पास और उन गीतों के साथ जिन्होंने मोहब्बत को अल्फाज दिए हैं, दोस्ती को सुर दिए हैं और ज़िंदगी को एक नई मुस्कान दी है। मैं हूँ अजय गिनिशा और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ हैं सुनहरे पल में। तो चलिए, यादों का ये सफ़र शुरू तो हमने कर लिया, उसको जारी रखते हैं अगले गीत के साथ।

0: मैं पुलिस अफसर हूँ।
1: मौसम बड़ा सुहाना है।
0: अच्छा जी,
2: आपको समझो
1: इसका एक अफसाना है।
0: अरे बाबा, कितनी बार कहोगे? हाँ,

इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे गीत को हम पेश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दिल से उन्हें एंजॉय कर रहे हैं। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग आ जाते हैं बड़े ही शिद्दत से आपका साथ देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको भी दिल से अच्छा लगा। लेकिन फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय। जी हाँ, जाने का वक्त हो गया है, लेकिन वापस लौट के आएंगे फिर से आपका साथ।

ऐसे नहीं गा के सुनाओ।

ध्यान मन जाए तम दिल मिला मुझसे हो रही

शबी महकी महकी जुल्फे हो गुलाबी गोरी बने लाल शराबी बहकी सांसे तू लवाबी देखो हम

पे गुलाबी गोरी बाहें शराब बहकी बहकी सांसें तू लाजा भी को हमसे हो गई खत।

Bianca.

जल्दी उठाओ, तस्वीर लाकर इधर लगाओ। हाँ लगाओ।